नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 30 सेकंड्स हुए हैं। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण

0: मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है मौन पालन लाभदायक व्यवसाय। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मौन पालन की। जी हाँ किसान भाइयों, मानव जाति की सबसे बड़ी मित्र होने के साथ छोटी सी मधुमक्खी से प्रकृति के विकास में बड़ा योगदान दिया है। मधुमक्खी मधुर और पौष्टिक खाद्य पदार्थ अर्थात शहद का उत्पादन करती है। लीची, नींबू, प्रजातीय फलों, अमरूद, बेर, आड़ू, सेब इत्यादि और अन्य दलहनी और तिलहनी फसलों में मधुमक्खियां द्वारा परागण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, परीक्षणों से यह भी जानकारी मिली है कि पर परागण के बाद जो फसल पैदा होती है उन दानों का वजन और पौष्टिकता अच्छी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मधुमक्खियां केवल शहद ही पैदा नहीं करती, वरन फसलों की पैदावार बढ़ाकर खुशहाल बनाकर प्रदेश और देश को आर्थिक पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद करती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी परिवार में 3 प्रकार की मक्खी पाई जाती है, जिनमें रानी, नर मक्खियां और कमेरी मक्खियां होती हैं। मधु अति पौष्टिक खाद्य पदार्थ तो है ही, साथ ही दवा भी है। मैदानी भाग में इस कार्य को शुरू करने का उपयुक्त समय अक्टूबर और फरवरी में होता है। इस समय एक स्थापित मौन वंशों से प्रथम वर्ष में 20 से 25 किलोग्राम, दूसरे वर्ष से 35 से 40 किलोग्राम मधु का उत्पादन हो जाता है। स्थापना का प्रथम वर्ष ही कुछ महंगा पड़ता है। इसके बाद केवल प्रतिवर्ष 6-10 किलोग्राम चीनी का खर्च रहता है। प्रति मौन वंश स्थापित करने में लगभग 2450 रुपए व्यय करना पड़ता है। मधुमक्खी पालकों की मधुमक्खियों का प्रत्येक 10वें दिन निरीक्षण आवश्यक है। आधुनिकतम ढंग से मधु निष्कासन कार्य किया जाता है, जिसमें अंडे बच्चे का चैम्बर अलग होता है। शहद चैम्बर में मधु भर जाता है। मधु भर जाने पर मधु फ्रेम सील कर दिया जाता है। शील्ड भाग को चाकू से परत उतार कर मधु फ्रेम निष्कासक यंत्र में रखने से और उसे चलाने से सेंट्रीफ्यूगल बल से शहद निकाला जाता है और मधुमक्खियों का पुनः मधु इकट्ठा करने के लिए दे दिया जाता है। इस प्रकार मधुमक्खी वंश का भी नुकसान नहीं होता है और मौसम होने पर लगभग पुनः शहद का उत्पादन हो जाता है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन का महत्व फलों, सब्जियों, दलहनी तिलहनी फसलों पर परागण के द्वारा उपज की बढ़ोतरी तो होती ही है, इसके साथ साथ इसके द्वारा मधु मोम का लाभ भी मिलता है। किसान भाइयों, स्थापना के प्रथम वर्ष में 3 मौन वंश से 2 अतिरिक्त मौन वंश और 20 से 25 किलोग्राम मधु का उत्पादन करके लगभग 2000 से 2500 रुपए की आय प्रतिवर्ष होती है। दूसरे वर्ष में केवल 300 से 350 रुपए व्यय करके मधु का उत्पादन करके लगभग 3500 रुपए से 4000 रुपए तक की प्रतिवर्ष आय की जा सकती है। मधुमक्खियां विभिन्न कृषि और बागवानी फसलों में परागण सुनिश्चित करके और इसके साथ ही शहद और अनेक प्रकार के छत्ता उत्पादों को उपलब्ध करा के समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। धीरे धीरे यह व्यापक रूप से अनुभव किया जा रहा है कि मधुमक्खियां पर्यावरण मित्र कृषि के साथ साथ फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से कम खर्चीली हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मधुमक्खियां द्वारा की जाने वाली परागण संबंधी सेवा से जो अतिरिक्त उपज प्राप्त होती है उसका मूल्य सभी छत्ता उत्पादों के कुल मूल्य की तुलना में लगभग 15 से 20 गुना अधिक है। मधुमक्खी पालन में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालक अपनी आमदनी को काफी गुना बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो एकीकृत कृषि व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किसान या भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जा रही है। फसलों के परागण में मधुमक्खी पालन खासा उपयोगी है, जिससे कृषि आय में बढ़ोतरी के माध्यम से किसानों या मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ रही है और शहद, रॉयल जेली आदि महंगे मधुमक्खी उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। कृषि जलवायु मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन और शहद के निर्यात के लिए व्यापक संभावनाएं और अवसर उपलब्ध कराती हैं। वास्तव में किसान भाइयों, फसल उत्पादन के अतिरिक्त अगर हम मौन व्यवसाय को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये हुई बातें मौन पालन की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था मौन पालन लाभदायक व्यवसाय। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस गान।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस कान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है धैर्यवान बने, संकलन एवं वाचन निर्मला तिवारी का।

धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात धैर्य रखने पर समय अनुकूल सब कुछ होता है। वृक्ष तभी फल देते हैं जब उनका फल लगने का समय होता है, भले ही माली 100 घड़े पानी से रोज पेड़ को सींचे। अधीरता से कुछ होने वाला नहीं है बल्कि नुकसान ही होता है। अधीर व्यक्ति व्याकुलता में गलत निर्णय कर बैठता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति सोच समझकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा करता है। धैर्य इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने में मदद करता है, क्रोध खीज से बचाता है, इंसान को संबल प्रदान करता है, नकारात्मकता से छुटकारा दिलवाकर तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। हम कह सकते हैं कि धैर्य सहनशीलता का परिचायक है। धैर्यवान होना सरल नहीं है, या यह कहना भी शायद गलत ना होगा कि आज की दुनिया में धैर्यवान बनना सबसे कठिन है। मनुष्य के जीवन पथ पर कई रुकावटें बाधाएं आती हैं, रास्ते कठिन हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे क्षण भी आते हैं जब कोई मार्ग नहीं सूझता है, मन अशांत विचलित हो गलत दिशा की ओर जाने के लिए मचलता है। ऐसे में धैर्य हमें गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकता है, अवसाद कुंठा से घिरने से भी बचाता है। विचारों में सदैव सकारात्मकता का संचार कर मन को दृढ़ कर उम्मीद की किरण जगाता है। कबीर के दोहे की यही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। संत कबीर ने अपने इस दोहे से यही समझाने का प्रयास किया है। उतावलेपन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मेहनत का फल मिलेगा लेकिन समय आने पर ही। कई बार हम तत्काल लाभ प्राप्ति के लिए जीवन के मूल्यों को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन धैर्य ही इन अवगुणों से हमें बचाता है। जीवन को संयमित रखने के लिए यह एक अहम मूल मंत्र है। जब जिंदगी में निराशा के बादल छाते हैं तब यही हमें राह दिखाता है। इसलिए मानव का धैर्यवान होना आवश्यक है। जिसके भीतर यह गुण है वास्तव में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी वह मुकाबला कर सकता है। ऐसे लोग शांत चित्त होकर मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और भटकाव से बच जाते हैं। भारतीय जीवन दर्शन में सब्र या धैर्य को व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। कहावत भी प्रचलित है कि सब्र का फल मीठा होता है। धैर्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु एक विचलित मन मस्तिष्क वाला व्यक्ति सामने पड़ी काम की वस्तु को भी हड़बड़ी में अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है जिसे वह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके अंदर अधीरता थी। इसके विपरीत धैर्यवान इंसान कोयले में भी हीरा निकालने का सामर्थ्य रखता है। हम इसे भगवान बुद्ध के इस प्रसंग से आसानी से समझ सकते हैं। बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ देशाटन पर निकले थे। नगर कस्बे गांव जंगल से घूमते हुए शिष्यों से ज्ञान चर्चा भी कर रहे थे और व्यवहारिक प्रमाण भी दे रहे थे। इसी बीच जंगल में एक नदी मिली, जिसे पार कर जंगल से निकलते ही बुद्ध ने अपने एक शिष्य से जल पीने की इच्छा जाहिर की। शिष्य जल्दी से जल लाने के लिए नदी की ओर गया, पर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, भगवान क्षमा करें, वह जल शुद्ध नहीं है। भगवान बोले, अभी तो हम उसी रास्ते से आए हैं, तब तो जल साफ था, अशुद्ध नहीं था। इस पर शिष्य ने कहा कि लेकिन अभी तो पूरी नदी ही काली हो गई है। तब बुद्ध ने दूसरे शिष्य को जल लाने के लिए भेजा। वह गया और एक घड़ा स्वच्छ जल लेकर आ गया। प्रभु ने पूछा, वत्स, क्या तुम जल कहीं और से लाए हो? उसने कहा, नहीं, मैंने नदी के जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा की। मिट्टी नीचे बैठ गई, तब मैं साफ जल ले आया। मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, पहले का जल काला इसलिए हो गया क्योंकि पशुओं ने नदी को पार किया था, तो मिट्टी जल में घुल गई। तुमने धैर्य से थोड़ी देर मिट्टी के नीचे बैठने की प्रतीक्षा की, किंतु पहले वाले शिष्य ने अधीरता दिखाई और पानी तक पहुँच कर भी वह उसे ला ना सका। यही अंतर है धैर्य और अधैर्य में। अधीरता में व्यक्ति सामने उपलब्ध वस्तु को भी ठुकरा देता है और धैर्यवान व्यक्ति शांति से सही समय की प्रतीक्षा कर इच्छित वस्तु पा लेता है। रहीम जी ने भी इस बात को दोहे से समझाया है। रहीमन चुप ही बैठिए, देख दिनन की फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत बात नहीं बेर। अर्थात समय का फेर देख चुप ही बैठना उचित है, यानी उचित समय का समय संयम रखना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में धैर्यवान बने, इस विषय में आपको बता रही थी निर्मला तिवारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरिओम शरण के गाए चंद भक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में हरि ओम शरण को। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है खुश रहना भी एक कला है। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर प्रणव कुमार वर्णवाल।
1: आजकल की लाइफस्टाइल में खुश रहना भी एक कला है। हम खुश कैसे रहें और साथ साथ जो हम एक तनाव के वातावरण में ज़िंदगी जी रहे हैं उस तनाव को कैसे कम करें, और जो लोगों में एक संवादहीनता और एक अकेलापन का एहसास होने लग गया है, इन सब चीज़ों से कैसे हम बाहर आए, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आमंत्रित हैं रांची के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार बर्णवाल। डॉक्टर बर्णवाल, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। खुश रहना भी एक कला है, एक आर्ट है, कैसे लोग अपने अंदर डेवलप करें?
2: आज जो खुश है वो सफल है, यानी आज इस चीज़ की लोगों में बड़ा ही कमी है। लोग इस चीज़ के लिए लोग ढूंढते रहते हैं कि कैसे मुझे खुशी मिले, कैसे हम खुश रहें, कैसे अपनी ज़िंदगी को खुश रखें, कैसे हम परिवार को खुश रखें, समाज में बेहतर कर सकें। और अगर हम खुश रहते हैं तो मानसिक प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, यानी मानसिक बीमारी कम से कम होती है। और अगर मन की बीमारी कम होती है तो निश्चित तौर पर हमारी शारीरिक स्थिति पर भी एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत सा शारीरिक बीमारी बहुत कम होती है। खुश रहना एक कला है, और जो आदमी इस कला को सीख लिया या अपनी ज़िंदगी में डाल लिया वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकता है और बहुत संतुष्ट रह सकता है। इसकी शुरुआत अगर हम करें तो पहली चीज़ें हैं कि इसकी शुरुआत हमारी घर से होती है, यानी जिस फैमिली में सारे लोग खुश हैं, माता पिता खुश हैं, पूरे इन्वायरमेंट खुश है, उनके सगे संबंधी खुश हैं, यानी उनके दोस्तों लोग खुश हैं, तो डेफिनेटली उसका असर उस पर पड़ता है। यानी अगर फैमिली में सारे लोग अगर खुश हैं तो उसका इफेक्ट उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है। कोई भी आदमी खुश तभी रहेगा जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट से करेगा, चाहे फैमिली हो,

0: सोसाइटी हो या जहाँ काम कर रहा हो उस प्लेस हो या पढ़ाई का प्लेस हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो लोग खुश नहीं हैं, अगर वो अपनी दिनचर्या को देखें तो उनको ये समझ में आएगा कि खुश नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण होगा कि वो अपनी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ कर दिया है, कमी कर दिया है, यानी उनकी दिनचर्या ठीक से नहीं चल रही है। जैसे दिनचर्या की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हमारी होती है खान पान से, मतलब हम क्या खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, कितना पानी पीते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे कि खुश रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने दोस्तों को, परिवार वाले को, अपने सगे संबंधियों को समय दें। इसके साथ साथ हमारे जो जिस धर्म के हैं, हम पूजा पाठ पर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमारा टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार का है, मतलब टाइम मैनेजमेंट हमारा किस तरह का है, यदि ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान दें, साथ ही अगर नशा जैसी चीज़ों को भी अगर हम अपने ज़िंदगी पर बिल्कुल हावी नहीं होने दें, उससे अगर दूर रखें, तो हम बहुत हद तक अपने आप को खुश रह सकते हैं और दूसरे को भी खुश रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
1: खुशी तो आपके अंदर समाहित है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है। खुश रहने के लिए आपके आसपास का वातावरण भी बहुत जिम्मेदार हो जाता है, जैसा आपने बताया। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग तनाव के वातावरण से जी रहे हैं
0: जी।
1: हमारे रोजमर्रा की जो जीवन शैली है वो बड़ी अव्यवस्थित सी हो गई है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, और जब हम बहुत कुछ नहीं पाते हैं तो फिर तनाव हो जाता है, और यही तनाव दुख में बदलता है, आप अवसादित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे मन में लालसा क्यों होती है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस पाने की चाह लोगों में लगी रहती है।
0: एक्चुअली व्यक्ति को, हमारे समाज के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन का एक लिमिटेशन कहाँ तक है, यानी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम ये कंपेयर करते हैं कि उसके पास इतनी धन है, इतनी दौलत है, वो इस पोस्ट पर है, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी चीज़ें उसके पास है। जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, और उस कमी को पाने के लिए हम, जो हमारे दिमाग नहीं कहता है, लेकिन दिमाग का एक पार्ट नहीं कहता है, लेकिन दूसरे पार्ट उस पर इतनी हावी हो जाती है कि हम नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ की ललक हमारे में बढ़ती है, और बढ़ने के कारण से कुछ इस तरह से अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं जिसके कारण से हमें खुशी मिल नहीं पाती है, और भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपनी जितनी भी रूटीन वर्क है, जो भी हमारी क्रिया है, सबको ख़राब कर लेते हैं। इसके कारण से हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं।
1: लोगों में अकेलापन घिरता जा रहा है, लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं
0: जी।
1: और जो एक लोगों में जो बातचीत था वो कहने के ख़त्म सा होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गजट से लोगों से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन सामने मिलकर उनसे बातें कर अच्छी अच्छी बातें करके ये इस चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये संवादहीनता क्यों हो गई है, लोग अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लग गए हैं?
0: पिछले कुछ वर्षों से जैसे ही कि डिजिटलाइजेशन हमारे कंट्री और विश्व में आया है, तब से जो संवादहीनता की प्रवृत्ति लोगों में, संवादहीनता जैसी चीज़ें हमारे लगभग सारे लोगों में आया है। कुछ लोग ये चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं जो इससे डिजिटल से दूर रहते हैं। अभी के समय में जो डिजिटलाइजेशन हो गई है, इसमें हम ज़्यादातर समय अपने गैजेट्स में, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, और उससे रिलेटेड इवन हमारे जो कमाई का साधन है वो भी उसी से रिलेटेड चीज़ों में हम ढूंढते रहते हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर बड़ा ही बुरा पड़ता है और हमारे शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, उसे तरह तरह का बॉडी में चेंजेज आने लगती है। तो ये तो होगा ही, इसलिए होगा क्योंकि आप एक जगह एक रूम में बैठकर आपने आप को एक सेंट्रलाइज कर लिए हैं, आप किसी से बातें नहीं कर पाते हैं। जब किसी से बातें नहीं करेंगे तो जो ब्रेन जो का जो रासायनिक पदार्थ है जिसे सीरोटोनिन जो कहते हैं उसका सिक्रीशन तो होगा ही नहीं। जब वो सिक्रीशन ही नहीं होगा सीरोटोनिन का, सीरोटोनिन प्लेजर हार्मोन, खुश देने वाला हार्मोन है, खुश देने वाला केमिकल्स है, तो जो हमारे ब्रेन में वो सिक्रीट ही नहीं करेगा तो हम तो खुश नहीं रह पाएंगे। इवन जितनी भी खुशी की चीज़ें हैं सब में यही हार्मोन सिक्रीट होता है ब्रेन में। आज के ज़माने में जो हम अकेले सारे काम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं और इसके कारण से संवादहीनता बन जाती है, किसी से बात नहीं कर पाते हैं और इसका बड़ा ही इफेक्ट, बुरा इफेक्ट हमारे ब्रेन पर, हमारे बॉडी पर पड़ता है। इतना ही नहीं हमारे फैमिली पर, हमारे सोसाइटी पर, इवन जो हमारे दोस्तों करीब पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है और इस चीज़ से हम लोग को बचना चाहिए।
1: लोग के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होती जा रही है, कैसे लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं, खुलकर हंसे, ठहाके लगाएं?
0: हम अपने आप को कैसे खुश रख पाएं, मुस्कुराहट ला पाएं, और जब हम खुश रहेंगे मुस्कुराहट लाएंगे तो निश्चित तौर पर हम संतुष्ट रहेंगे, मुझे की बीमारियों से दूर रहेगी, चाहे वो मानसिक बीमारी हो या शारीरिक बीमारी हो उससे मुझे दूर रखेगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने दिनचर्या को ठीक करें, यानी जो लोग दिनचर्या को ठीक रखते हैं उसको मेंटेन करें और जो लोग दिनचर्या को ठीक नहीं रखते हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने का में ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सलाद, सारा सीजनल होना चाहिए।
1: इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है,
0: प्रभाव बहुत प्रभाव पड़ता है। खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावे मिनरल्स, विटामिन की बड़ी ही जरूरत होती है, जिससे हमारे ब्रेन तरोताज़ा रहता है, तो इस पर विशेष ध्यान दें।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में, खुश रहना भी एक कला है, इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर प्रणव कुमार बर्णवाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे

और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

8:45 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू। खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति सर होगी प्रीति कुमारी के संयोजन प्रशांत गौरव की। 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 10 बजे हिंदी में समाचार। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर होगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुनेंगे, और 3:30 पर नाट्य तरंग आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 4 बजे प्रादेशिक समाचार 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 5 बजे प्रादेशिक समाचार 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग में संतूर वादन। राग है आलाप, जोड़ ध्रुपद अंग। आज कलाकार हैं पंडित भजन सुपोरी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे संतूर वादन राग था आलाप जोड़ ध्रुपद अंग और कलाकार थे पंडित भजन सपोरी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कानून की बातें हमारे रांची केंद्र से। आज का विषय है बुजुर्गों के अधिकार। इस विषय में आपको बताएंगे श्री निर्मल कुमार भारती।

0: काफ़ी इसमें विलंब हो जाता है और फिर व्यक्ति तनाव से भी ग्रसित हो जाता है। लेकिन जब विवादों का निपटारा सही से किया जाए, त्वरित गति से किया जाए, तो इसमें सभी को लाभ मिल जाता है। एक ऐसा ही समारोह चलाया हुआ है जिसे हम समाधान समारोह 2026 कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है। इसमें बहुत सारे मामले जो न्यायालय में लंबित है उसका निष्पादन त्वरित गति से किया जाएगा और सभी को सुलभ न्याय प्राप्त हो पाएगा। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि समाधान समारोह 2026 क्या है, किस तरह के मामलों का इसमें निष्पादन होगा, कौन से ऐसे मामले जो लंबित हैं और किस न्यायालय में मामले लंबित हैं, उस मामले को समाधान समारोह में लाकर उस मामले को त्वरित गति से निष्पादित किया जाएगा और इसमें सबको न्याय मिलेगा। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए कि समाधान समारोह क्या है, इसमें आप सुलभ न्याय किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री दीपक कुमार साहू जी। दीपक जी स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: दीपक जी, आने वाले समय में समाधान समारोह 2026 बड़े जोर शोर से इसकी तैयारी शुरू की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और नालसा के द्वारा। तो ये समाधान समारोह क्या है और किस तरह के मामलों का इसमें निष्पादन किया जाएगा?
1: जी बिल्कुल, ये समाधान समारोह जो नालसा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम विशेषकर यह विशेष लोक अदालत है, स्पेशल लोक अदालत जिसको हम लोग जानते हैं, ये 21, 22 और 23 अगस्त को इसके संबंधित जो भी केसेस जो हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, उन केसेस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनको चिन्हित करते हुए सभी पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य स्तर पे जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है वहाँ भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ से जो भी पार्टीज हैं, संबंधित पार्टी जहां पर रह रहे हैं, उनको इनकी सूचना मिले और उनको सूचना मिलने के साथ वो संबंधित जो भी नियरेस्ट जो डालसाज हैं और एसएलएसएज हैं, वहां जाकर आपसी में दोनों पक्ष उपस्थित होकर केस का अपना अगर निपटारा करना चाहते हैं मीडिएशन माध्यम से, प्रोसेस मध्यस्थता के माध्यम से, तो केस का निपटारा कर सकते हैं। और जब वो केस का निपटारा हो जाएगा तो वही केस जो है यहाँ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे और 21, 22 और 23 अगस्त को एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बेंच का गठन होगा

0: और जो भी सेटल्ड केसेस है उनका फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा।
1: जी
0: तो कुल मिलाकर जो है ये समाधान, जो समारोह है, ये राष्ट्रीय मतलब विधिक सेवा प्राधिकार जो है उनके तत्वाधान में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है एक सुलह का संकल्प और न्याय का विकल्प को देखते हुए, हम लोग कहते हैं न्याय आपके द्वार समाधान के साथ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नालसा के माध्यम से, झालसा डालसा के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाह रही है, ताकि लोग अपने केसेस का त्वरित गति से और इजी वे पे उसको
1: जी
0: समाधान कर सके।
1: तो इसमें जो मामले लंबित पड़े हुए हैं सर्वोच्च
0: जी
1: न्यायालय में, और जो मामले जिस जिले का है, उस जिले में उस मामले की सुनवाई होगी इस समाधान समारोह में?
0: जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या, जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, जिस
1: जी
0: किसी भी व्यक्ति का मामला पेंडिंग है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैसे केसेस का आइडेंटिफिकेशन किया है, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 45,000 केसेस का उन लोगों ने सिलेक्शन किया है, जिसमें लगभग 600 के आसपास के केसेस हमारे झारखंड राज्य में भी आए हैं। तो इनसे संबंधित हम लोग जो संबंधित डालसा जो है नीचे जिला स्तर पे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से, इवन झालसा में जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो केसेस हैं जिसमें पार्टीज हैं, तो वो झालसा के माध्यम से भी हम लोगों ने सबको पूरे जिला स्तर में रह रहे जो भी लिटिगेंट हैं उनको हम लोग नोटिसेस किए हुए हैं, और उनको नोटिस करने के बाद उनके जो भी उनकी सहूलियत के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से, वो संबंधित, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई व्यक्ति धनबाद का रहने वाला है, उसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, तो हम लोग धनबाद के पार्टी को भी नोटिस किए हैं, और उनके जो ऑपोजिट पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो या फिर कोई प्राइवेट पार्टी ही हो, दोनों को नोटिस करने के बाद उनको हम लोग वही नियरेस्ट जो डालसा के जो ऑफिस है वहां पर मेडिएटर नियुक्त करके, और वहां पर हम लोग उनका मेडिएशन कराएंगे। अगर दोनों पक्ष आकार आपस में आकर और आपसी सहमति से उसका सुलह करते हैं, तो उनके द्वारा जो सुलहनामा है उसको हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनको भेजेंगे, और फाइनली फिर 21, 22, 23 जो 3 डेट निर्धारित किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की
1: अगस्त
0: बेंच, हाँ अगस्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो बेंच जो बनेगा उसमें इस केस का निपटारा कर दिया जाएगा।
1: जी
0: तो बिना वहां सुप्रीम कोर्ट गए, दिल्ली गए भी मामला का निष्पादन।
1: जी
0: और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जो यहां जुड़ेंगे तो वीसी जो मतलब ऑनलाइन भी आप उससे कनेक्ट होके और घर बैठे भी आप अपना केस का निपटारा कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: क्योंकि जो व्यक्ति जिस जिले का है, कोई धनबाद का है, कोई चतरा का है, कोई पलामू का है, और उसके मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं,
0: जी
1: तो उसको सूचना जाएगी, उसके
0: जी
1: पास
0: बिल्कुल,
1: चिट्ठियां जाएंगी, किसी भी
0: नोटिस वगैरह भी
1: बहुत तरह से
0: जाएंगे।
1: सूचनाएं आजकल संप्रेषित हो जाती है,
0: हाँ
1: तो वो व्यक्ति जहां का है वहीं पर एक मेडिएटर के द्वारा
0: बिल्कुल
1: उसकी बातों को सुना जाएगा
0: जी
1: और वहीं पर समाधान निकालने की एक त्वरित कार्यवाही की
0: हाँ। मैं
1: जाएगी।
0: छोटा ये भी ऐड
1: जी
0: करना चाहूंगा, क्योंकि अभी क्या है कि नोटिस की प्रक्रिया जारी है
1: जी
0: और सभी जगहों पर नोटिस जारी है, तो बहुत जगह से ऐसे कॉल भी आते हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से बोलूंगी नोटिस से डरे नहीं,
1: जी
0: वो नोटिस आपके ही केस के समाधान के लिए बड़ा उसको अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोगों ने उसको भेजा है, क्योंकि बहुत जगह से कॉल आते हैं कि नोटिस आया है, लोग डरते हैं, थाने से भी जा रहे हैं, तो ये समाधान समारोह बिल्कुल आपके लिए रखा गया है और आपके केसेस का सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित गति से समाधान के लिए रखा गया, इसलिए नोटिस जो है, नोटिस मिलने के बाद आप लोग जो है उसमें जो भी प्रक्रिया उसमें आप पार्टिसिपेट करें, अगर आपको सहमति आपके साथ, अगर समाधान करना चाहते हैं, उस केस का सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो मध्यस्थता के माध्यम से आपकी सहमति के साथ ही केस का निपटारा होगा।
1: जी समाधान समारोह एक तरह का विशेष लोक अदालत है,
0: जी
1: इसमें दोनों पक्ष जहां पर हैं वहीं पर आपको सर्वोच्च न्यायालय जाने की
0: आवश्यकता नहीं
1: जरूरत
0: है।
1: नहीं है,
0: जी
1: आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही न्याय सुलभ है, दोनों पार्टियां मिलेंगे और मिल बैठकर एक मेडिएटर के समक्ष अपनी बातें रखेंगे, और वहां जब सुलह हो जाती है, बात बन जाती है, आपस में एक राजीनामा हो जाता है, दोनों पक्षों की जीत हो जाती
0: जी
1: है,
0: जी
1: एक
0: बिल्कुल
1: तरह की
0: बिल्कुल
1: ये एक एडीआर जिसे हम कहते हैं
0: बिल्कुल
1: अल्टरनेट
0: बिल्कुल
1: डिस्प्यूट
0: बिल्कुल
1: रेजोल्यूशन है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मिल बैठकर एक मेडिएशन के द्वारा,
0: मध्यस्थता के माध्यम
1: एक
0: से,
1: मीडिएटर
0: हाँ
1: के द्वारा
0: हाँ हाँ
1: बात आपकी बन जाती है और एक निर्णय पर आप पहुंच
0: निर्णय पर
1: जाते हैं।
0: पहुंच
1: जो
0: जाते हैं
1: वर्षों से मामले लंबित चल रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और फिर आप तनाव से भी घिरते हैं, काफी वक्त लगता है, तो एक बहुत बड़ा न्याय प्राप्त करने का एक अवसर है समाधान समारोह 2026, जो आगामी 21, 22, 23 अगस्त को हर जिले में जहां जहां के मामले
0: जी
1: हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: सर्वोच्च
0: बिल्कुल
1: न्यायालय तक पहुंचे हुए हैं,
0: बिल्कुल
1: उस जिले में नोटिस के माध्यम से आप तक जाएगा, और
0: जी
1: इस नोटिस को पढ़कर देखकर घबराए नहीं, आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा अवसर है न्याय प्राप्त करने का, न्याय आपके द्वार आपके घर पे ही न्याय सुलभ होगा।
0: जी
1: तो इसमें जो भी समाधान होगा दीपक
0: जी
1: जी,
0: जी
1: आगामी 21, 22

0: 23 अगस्त 2026 को। और प्रकृति क्या होगी, जो मिल बैठकर जो भी बात बनेगी।
1: जी बिल्कुल, जिसमें बैठने बाद मैं बताऊँ तो नेचर ऑफ जो केसेस है, जैसे किसी भी तरह के केसेस आपके, लाइक दीवानी मामले हैं या
0: जी
1: फिर कोई वैवाहिक संबंधिक डिस्प्यूट हैं, बैंक ऋण से मामले हैं, बैंक ऋण या बैंक वसूली के मामले हैं, बीमा संबंधित दावे हैं, या फिर आपके मोटर दुर्घटना हो गए, सुलह
0: जमीन
1: योग्य
0: जायदाद,
1: आपराधिक मामले, जमीन जायदाद से संबंधित मामले, मैट्रिमोनियल जो आपके केसेस हैं, चाहे सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित भी किसी व्यक्ति के मामले कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, वैसे सारे मामले को इसमें लिया गया है और वैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। कुछ नोटिसेस आपके पास माध्यम से भेजा जा रहा है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चिन्हित करके भी दिया गया है। उसके अलावे भी वैसे मामले जिनमें पार्टी जो भी लिटिगेंट से उनको लगता है कि ये मामला हमारा सुलहनीय है लेकिन हमें उसका नोटिस नहीं मिला है, तो वैसे मामले को भी लेकर अगर आप संबंधित नज़दीकी जो डालसा वहाँ जाते हैं या झालसा में आकर अपने बातें, तो वैसे मामलों का भी हम लोग निपटारा उसमें करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जिनको नोटिस मिला तो ये मान के चले कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया है तो वही मामलों का ही सिम निपटारा होगा, ऐसा नहीं है। वैसे भी मामलों का निपटारा होगा जो सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और आपको लगता है कि ये मामले का निपटारा हो सकता है और हम लोग राजी हैं, तो निसंकोच आप लोग अपने नजदीकी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है या झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जो रांची में है, वहां आप लोग पहुंचे और अपनी बातों को रखें। आप लोगों का जो केसेस का जो भी है प्रॉपर वे पे मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।
0: दीपक जी, समाधान समारोह 2026 जो आगामी 21, 22, 23 अगस्त को सभी जिले में होगा, और जहां जहां केसेस लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, ये एक स्वर्णिम अवसर है लोगों को न्याय प्राप्त करने का।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और मिल बैठ कर यदि हम समस्या का समाधान कर लेते हैं तो जो मामले वर्षों तक लंबित पड़े हैं उससे आपकी मुक्ति मिल जाती है।
1: बिल्कुल,
0: मिल बैठकर समस्या का समाधान हो जाता है
1: समाधान
0: तो
1: हो
0: दोनों
1: जाता
0: पक्ष इसमें राजी हो जाते हैं, दोनों पक्षों की जीत हो जाती है और त्वरित गति से आपको न्याय मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जो तनाव या अवसाद से घिर जाते हैं, लंबे लंबे जो आपको समय लगता है और बार बार आपको सर्वोच्च न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उससे आपकी मुक्ति मिलेगी।
1: मुक्ति मिलती
0: और
1: है।
0: आपके शहर में जहां आपने मामला दायर किया है, सर्वोच्च न्यायालय तक आपकी बात पहुंची हुई है और आपको न्याय नहीं मिल पाया, आपको ऐसा लगता है, तो घर बैठे ही आपको न्याय सुलभ हो जाएगा। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जिनके मामले लंबित हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जिनको नोटिस पहुंच रहा है या जिनको नोटिस नहीं भी पहुंच रहा है, वो इस सेवा का लाभ उठाएं,
1: बिल्कुल
0: इस अवसर का लाभ ले।
1: बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात आपने कहा। अभी समाधान समारोह के माध्यम से अपने न्यायालय जो है उनका भी यही मानना है कि जो हम लोग जिसमें पार्टिसिपेंट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से इसमें होना चाहिए। कभी क्वेश्चन है क्यों हम पार्टिसिपेट करें, तो आपने जैसे बताया कि पहला कि एक त्वरित एवं समयबद्ध निपटारा है
0: जी,
1: कि तुरंत इसमें बहुत ज़्यादा लेट होता नहीं है, तुरंत विद इन मिनट्स में केसेस का अगर दोनों पार्टी सहमति में मिल जाए तो विद इन मिनट्स में केस का निपटारा हो जाता है, टाइम बाउंड निपटारा हो जाता है। दूसरा जी, कोई लंबी न्यायिक प्रक्रिया नहीं रह जाती कि बहुत लंबी प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है, इसमें तुरंत एक दो पार्टी आते हैं, सेटलमेंट करते हैं, अवार्ड बनता है, डिस्पोज हो जाता है मैटर, तो लंबे समय से अरसे से चला आ रहा केसेस का भी आपका निपटारा होता है। तीसरा कि किफायती समाधान है, किसी तरह का बहुत ज़्यादा आपका कोई कॉस्ट नहीं लगना, कॉस्ट बेयरिंग है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको उसमें खर्चे लग रहे हैं या अलग से आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, फी देने पड़ रहे हैं। उसके अलावा कि पक्षकारों की भी आपसी सहमति हो जाती है तो एक सौहार्दपूर्ण तरीके से होता है, अपने घर ना किसी की हार होती ना किसी की जीत होती है और एक अच्छा मतलब एक संबंध भी बना रहता है, और देखा जाए तो विवाद का अंतिम निपटारा भी यहीं से निस्तारण भी हो जाता है। तो देखा जाए तो इस तरह से विन विन ही सिचुएशन है अगर हम इस तरह के कैंपेन को यूज करते हुए और इस तरह का मध्यस्थता की प्रणाली को हम अपनाते हैं, केस का निपटारा करते हैं, तो दोनों पार्टियों की जीत है। और मैं यही कहूंगा कि ये जो समाधान समारोह जो लाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नालसा के द्वारा, इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है इसका मतलब इसका लाभ लें और लाभ लेने के बाद अपने केस का जो है निपटारा करें
0: जी, और घर पे ही सारे मामले
1: घर पे ही घर बैठे आपके सारे मामलों का निष्पादन हो जा रहा है, ये और भी अच्छी बात है आप लोगों के।
0: तो मित्रों, समाधान समारोह का आप लाभ लें, जो भी मामले आपके सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है इस समाधान समारोह में आप अपनी बात को लाकर आप अपनी जो भी विवाद है उसका निष्पादन आपके गृह जिले में जहां से आपने मुकदमा दायर किया है उसी जिले में, उसी जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आप जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और उस दिन त्वरित गति से बिल्कुल आसान से सुगमतापूर्वक आपको न्याय मिल जाएगा इस समाधान समारोह में। बड़ी अच्छी एक पल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक कुमार साहू जी, अंडर सेक्रेटरी।

जलसा जब इस कार्यक्रम में आए और समाधान समारोह 2026 पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये कार्यक्रम में ही समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह एक नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से

0: हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आत्मरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा

0: संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह।

0: दी है, घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
2: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first 4 approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए झारखंड को मिला अचीवर का दर्जा। देश के टॉप 3 राज्यों में बनाई जगह। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक। कम पानी वाली मिलेट की खेती बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की SIR कार्यक्रम की समीक्षा। कहा, हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो दर्ज। राज्य के संथाल और कोल्हान सहित आधे हिस्से में मॉनसून सक्रिय। 8 जुलाई से पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। और रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निशाना लगाकर किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड ने देश के टॉप 3 राज्यों में जगह बनाई है। बेहतर वित्तीय अनुशासन के कारण राज्य को अचीवर श्रेणी मिली है। झारखंड ने टैक्स राजस्व 60% से अधिक रखा और राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे बनाए रखा। संतुलित कर्ज प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर खर्च से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। राज्य में कमजोर मॉनसून और एल नीनो के प्रभाव से पैदा हुई सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राज्य में अब तक सामान्य से 54% कम बारिश दर्ज की गई है। मंत्री ने पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर कम पानी वाली मिलेट की खेती को बढ़ावा देने और आपातकालीन योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं।
1: वर्षा का सदुपयोग करते हुए हम लोग लगभग कम से कम 60% तक बिछड़ा हम लोग ले जा पाएंगे और आशा करते हैं कि जितने भी किसान हैं वो भी जो अन्य फसल हैं उसके तरफ भी अल्टरनेटिव के रूप में आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ जिला में हम लोगों को रिपोर्ट भी हुआ है कि जैसे मोटे अनाज जैसे मड़ुआ एक्सेट्रा, दलहन, तिलहन, इन सभी फसलों का भी किसान ज्यादा उपयोग कर रहे हैं इस साल वर्षा को देखते हुए।
0: इधर राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि नई कृषि नीति के तहत किसानों को आसान शर्तों पर बैंक लोन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ग्लोबल मार्केट लिंकेज की सुविधा मिलेगी, जिससे पारंपरिक खेती एक मुनाफे वाले बिजनेस में तब्दील हो सके।
2: झारखंड मोर और लेस जो है कृषि प्रधान राज्य ही है, खनिज भी है यहाँ पे। हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें किसानों को अधिकतम सब्सिडी मिले, इंडस्ट्री घोषित होने से जो उनके जो अलाइड बेनिफिट्स हैं वो उनको प्राप्त हो, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे हैं। और एग्रीकल्चर पॉलिसी इसी बात को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि किसानों को इसमें अधिकतम किस तरह से हम लोग लाभ पहुंचाए।

0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के रिम्स में अत्याधुनिक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में आंखों की जटिल बीमारियों का आधुनिक इलाज संभव होगा।
1: रिम्स में बेहतर से बेहतर हम सुविधा कैसे दें, इस दिशा में मेरा फोकस रहता है। झारखंड वासियों को आईज हॉस्पिटल समर्पित करने जा रहे हैं। रिम्स के कैंपस में ये हॉस्पिटल है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, विजन है कि आम जनता तक हम स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएं, उनका बेहतर इलाज हम करें।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की ऑनलाइन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। घर घर गणना और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया है। सभी नए नाम 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित किए जाएंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा की बेटी तनिषा गौतम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगी। गुजरात के सानंद में भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर यह संवाद होगा। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा इस ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आगामी 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में झारखंड सरकार की ओर से आयोजित होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तैयारी तेज कर दी गई है। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा यह आयोजन राज्य के विजन 2050 को गति देने और झारखंड को आईटी, एआई तथा औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
2: हम इंडस्ट्री, आईटी और टूरिज्म को नेशनल लेवल पर भी प्रमोट करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग दिल्ली से करेंगे। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मानसून में ट्रेवल करना सबसे सेफ है। हमारे यहां कोई लैंडस्लाइड्स नहीं है, कोई फ्लड नहीं है, किसी पर्यटक के रास्ते बंद होने की स्थिति में फंसने की कोई संभावना नहीं है। तो हम दो पॉलिसी का ड्राफ्ट वहां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक झारखंड की टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट है और दूसरा झारखंड की होम स्टे पॉलिसी का ड्राफ्ट है।
0: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव को नया समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 6 और 7 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले जून में समय मांगने के कारण उनकी पूछताछ टल गई थी। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड अंतर्गत बेलबेड़ा गांव में मलेरिया का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्क्रीनिंग अभियान में अब तक 336 लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 160 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभावित इलाके में मेडिकल टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं और संक्रमितों को मौके पर ही दवाएं दी जा रही हैं। राज्य के आधे हिस्से में अगले 4 दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। इससे संथाल और कोल्हान सहित पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 8 जुलाई से मॉनसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खुद निशाना लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
3: के पीछे जो योग अभ्यास है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी संस्कृति यही बताती है कि हम अपने जीवन में या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ हम काम कर रहे हो, हमारे साथ अनुशासन होने की आवश्यकता है। हर एक सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि यदि हम धैर्य का धारण करते हैं तो हम धर्म का पालन करते।
0: और अब अखबारों की सुर्खियाँ, रांची से प्रकाश

प्रकाशित अधिकतर प्रमुख अखबारों ने राज्य के वित्त मंत्री द्वारा सुरक्षा वापस किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नाराज वित्त मंत्री ने तीनों गाड़ियां और सभी 16 सुरक्षाकर्मी लौटाए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड की पंचायतों को मिलेंगे 14,231 करोड़। प्रभात खबर के शब्द हैं, वित्त विभाग में लटक रही योजनाओं की फाइल, तीन मंत्रियों ने जताई आपत्ति। दैनिक जागरण लिखता है, जेपीएससी सिविल सेवा पीटी में 2,204 सफल। और अंत में मुख्य समाचार, नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए झारखंड को मिला अचीवर का दर्जा, देश के टॉप 3 राज्यों में बनाई जगह। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक, कम पानी वाली मिलेट की खेती बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की SIR कार्यक्रम की समीक्षा, कहा हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो दर्ज। राज्य के संथाल और कोल्हान सहित आधे हिस्से में मॉनसून सक्रिय, 8 जुलाई से पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। और रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निशाना लगाकर किया शुभारंभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म चलती का नाम गाड़ी में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कार्यक्रम का आखिरी गीत है ये, जहरीला इंसान, आवाज़ एक बार फिर से किशोर कुमार की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता कभी भी एक दिन से नहीं आती, लेकिन एक दिन में जरूर मिलती है यदि प्रयास निरंतर हो तो। इतिहास गवाह है दोस्तों कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। असफलता अंत नहीं बल्कि सफलताओं की बढ़ने का और आगे बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता रहता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हम दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी सफलताएँ ही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आपको मौसम का हाल बता दे। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम

तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज ह्यूमिडिटी रहेगी 75% तक। आज सूर्यास्त का समय होगा 6:45 पर और कल आज सूर्यास्त का समय होगा 6:45 पर और कल सूर्योदय का समय होगा 5:10।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए बात करते हैं आज ज्ञान विज्ञान में तकनीक के बारे में। तकनीक तभी वरदान बनती है जब उसका उपयोग मानवता के हित के लिए किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मानव सभ्यता के लिए लाभ नुकसान और इसकी आवश्यकता भी है। दोस्तों, आज का युग तकनीक का युग है। जिस तरह बिजली, इंटरनेट और मोबाइल ने हमारी दुनिया बदल दी है, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नई क्रांति लेकर आया है। AI ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को सीखने, सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाती है। पहले इसके फायदे की बात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI डॉक्टरों को बीमारियों की जल्द पहचान करने में मदद करता है और इसके सटीक इलाज और तेज इलाज के लिए सहायक होता है। शिक्षा में AI विद्यार्थियों को सीखने की गति के अनुसार पढ़ाई में सहायता करता है। कृषि में किसानों को मौसम, मिट्टी और फसल से जुड़ी जानकारी देकर बेहतर उत्पादन में मदद करता है। उद्योग और व्यवसाय में AI कई कठिन और दोहराए जाने वाले काम तेजी से और कम गलती के साथ कर सकता है। आपदा प्रबंधन में AI मौसम का पूर्वानुमान लगाने और लोगों को समय रहते सतर्क करने में भी उपयोगी है, और इसके नुकसान भी हैं। कई ऐसे काम हैं जो पहले लोग करते थे, अब मशीनें करने लगी हैं। इससे कुछ क्षेत्र में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि AI का गलत उपयोग किया जाए तो झूठी जानकारी अगर फैली तो ये लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। यदि हम हर छोटे बड़े काम के लिए केवल AI पर निर्भर हो जाएं, तो हमारी अपने सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए AI का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ ही करना आवश्यक है। हाँ, ये भी जरूरी है कि AI आज के समय में विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, लेकिन यह इंसानों और स्थान के लिए नहीं है, बल्कि इंसानों की सहायता के लिए बनाया गया है। अंतिम निर्णय संवेदनशीलता, नैतिकता और मानवीय भावनाएं आज भी मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य उसी का होगा जो नई तकनीक को सीखने के साथ साथ अपने ज्ञान, रचनात्मकता और मानवीय मूल्यों का भी मजबूती से उपयोग करेगा। तकनीक का सही उपयोग ही उज्ज्वल भविष्य की पहचान है। AI का अपना सहायक बनाइए, ना कि उसे अपना मालिक बनने दीजिए।

0: Osaka Moraya.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Na shahi, na shahe, na sa.

दोस्तों, बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही अपने साथ कई बीमारियों को लेकर के आता है। बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर तेजी से पनपते हैं। थोड़ी सी सावधानी अपनाकर आप स्वयं को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। बारिश के मौसम में हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाएं। लंबे समय तक रखा हुआ और बासी खाने से बचें। खुले में बिकने वाले कटे हुए फल, चाट, पकौड़ी और अन्य अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से परहेज करें। हमेशा उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ और सुरक्षित पानी पीना ही चाहिए। दूषित पानी से पेट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से कम 20 सेकेंड्स तक हाथ धोने की आदत बनाएं। घर के आसपास अगर पानी जमा हो तो उन्हें ठीक करें। पानी जमा ना होने दें। मच्छरदानी, जाली या मच्छर भगाने वाले साधनों का उपयोग करें, जिससे कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा कम हो। अगर आप भीग जाते हैं तो तुरंत अपने कपड़े चेंज करें, जिससे सर्दी जुकाम से बचा जा सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। अपने भोजन में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और विटामिन सी भरपूर मात्रा में शामिल करें। और पर्याप्त नींद लेना और व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। पैरों की देखभाल करें। बारिश के मौसम में पानी में चलने से पैरों को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाएं, ताकि इनमें जो फंगल संक्रमण होता है उसका खतरा ना हो। घर में साफ सफाई रखें। घर के आसपास कूड़ा, कचरा, गंदा पानी जमा ना होने दें। साफ सफाई रखने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बारिश के मौसम में पाचन शक्ति थोड़ी धीमी हो सकती है, इसलिए हल्का संतुलित भोजन करना ही बेहतर माना जाता है। इस मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है, इसलिए बचाव सबसे प्रभावशाली उपाय है।

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपसे बस यही कहना है कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें। और कार्यक्रम जोहार पलामू से अपनी रेडियो दोस्त वृद्धि को इजाज़त दे। नमस्कार, सुनते रहें ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो चलिए आगाज करते हैं फिल्म पाकीज़ा से। आवाज लता मंगेशकर की है।

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन में लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म धरती में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है सत्ते पे सत्ता, आवाज़ आशा भोसले की है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सूरत
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सागो थी। किस्सागो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहां खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आंच महसूस करती और इस आंच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती, राग रंग में मन नहीं लगता, तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागु थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली
तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सतवा नाक, लरजते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी प्रकृति ही

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में, वो सोचने लगता है। स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है। कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है,
कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का खजाना था, कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दानगी छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ, प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी?
क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।

सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में। कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है, है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानो मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़ी ही रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

मिका ने। और जब बात कार्य बद्रा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

इन बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घुमड़ने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। गिर रहे घुमड़कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर,

शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर, यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं। कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है। कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होती है जो पल पल अपना रंग और रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना। तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार उषा खन्ना हैं। और इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

तो आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं

बहाना का गीत जारी बदरा बैरीजा एक बेहद खूबसूरत और भावुक विरह गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रियतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आएं। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने पिए के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

ये था आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरल स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना, पंडित भरत व्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, टेट्रोजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

पानी दे दे तू मुहे भई रे देर मेरे तक समाज तो है आए ना लाज तू है दगाबाज दगाबाज धक धक धक धक धक धड़के दिया थर थर थर थर थर कांप दिया और पत्त से किया हट जा।

गोरी गोरी गोरी गोरी कमल किशोरी चंचल चकोरी एक गाँव की छोरी मैं हूँ नवल नवेली अलबेली नार समझाए थके तुरे बार बार मैं छुई मुई करू कान जतन छूते ही हाथ तुम लाए बद मेरा तन मुरारी मत छू मत छू मत छू।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृहलक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म का गाना पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, और ये फिल्म का नाम है चा चा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिक

0: 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur with an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency to block their finances, impose embargoes on arms sales, and seize their assets. The government has issued notice to Telegram.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिम सिंहभूम का किया दौरा। जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश।

0: और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामान्य से नई दिल्ली में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और कृषि सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों के उपस्थित थे। बैठक में धन और किसानों को राहत देने एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों और संभावित सूखे की स्थिति

0: हम चार कक्ष दुर्गा प्रसाद।
1: इनों का प्रभाव देखा जा रहा है। रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार प्रशांत महासागर के सतही तापमान में बदलाव यानी अल नीनो के कारण दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कमजोर पड़ रहा है।
2: देखिए प्रशांत महासागर में जो सतही समुद्री टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जो चेंजेस आता है पूर्वी या पश्चिमी भाग में, उस टेम्परेचर चेंजेस को हम लोग अलनीनो के नाम जानते हैं। तो इसके होने से ये होता है कि भारतीय मानसून कमजोर होता है, से अधिकतर खेती होती है उसी पर हम लोग ज्यादा निर्भर है, बारिश में अनियमितता देखने को मिलती है।
1: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। यह डिजिटल पहल महिलाओं को निडर होकर अपनी आवाज उठाने की सुविधा देती है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने राज्य के प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद एक ही अधिकारी को सौंपे जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का विकास और जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
3: आज के समय डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। काम को जितना विकेंद्रीकरण करके आप अकाउंटेबल लोगों को, पदाधिकारियों को बैठा करके आप रिजल्ट निकालिए, ऐसे समय में आप ये मर्ज करके इस पूरे व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं और मुझे लगता है इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है झारखंड की परिस्थिति में, और आज नहीं तो कल इनको रोल बैक करना ही होगा। इसलिए पुनर्विचार करें और नए नए पदों में नए नए पदाधिकारी जेपीएससी यूपीएससी से जो लोग आए हैं, जो भी वीडियो सीओ, उनको वहां दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बहाली करिए और उनको काम करने में लगाइए।
1: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नवनियुक्त महाधिवक्ता रोहिताश रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कानूनी मामलों की प्रभावी डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए जल्द ही अपग्रेड विधि पोर्टल 2.0 लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी जी को महान देशभक्त और दार्शनिक बताते हुए कहा कि उनके प्रेरणादायक विचार और आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का मार्गदर्शन करती रहेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी

0: रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद एसएसपी से लिखित शिकायत पर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है।
1: जो ढुल्लू बहादुर के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके गलत कारनामों को हम लोग खोल रहे हैं, उन तमाम चीजों से बाज आए। ढुल्लू अगर ये समझता है जो किसी क्रिमिनल को लगा कर हम लोगों को चुप करवा देगा, जब वो खुद नहीं बोल पाता है, चीजों की जवाब नहीं दे पाती है, तो क्रिमिनल को आगे करते हैं।
0: झारखंड राज्य खाद्य आयोग के प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने पश्चिमी सिंहभूम के दो दिवसीय दौरे के बाद कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित सभी जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन दिया जाए।
2: जांच में मैंने पाया कि उन लोगों का जो आरोप था वो सही है। मैंने यहाँ के एडिशनल कलेक्टर जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं उनको मैंने ये निर्देश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान करके और जितने दिनों का राशन नहीं मिला है सवा गुना मुआवजा के साथ उसे राशन उपलब्ध कराना है।
0: चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, नवनिर्मित बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीआरएम ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और साफ सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए।
3: यहाँ पे आवागमन के लिए लाइन की कमी है, यहाँ पर लाइनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे और लाइन दी जा सकती है या कहाँ पे लाइन ऐसे दी जाए ताकि गाड़िया जल्दी आया जाए, तो उसके लिए एक सर्वे किया था हमने, यार्ड में भी गए थे, वो है उपयोग किया जाए तो पैसेंजर के लिए जो सुविधा है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र का विस्तार देश की आत्मनिर्भरता की नींव है। 65वीं रांची जिला सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 15 बालक वर्ग का खिताब मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके ने जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में कांके की टीम ने सेंट जॉन्स स्कूल को 4-3 से पराजित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिमी सिंहभूम का किया दौरा। जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है। ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट आकर मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है। गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने। तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाएं, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए, आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबान होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीले सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गजल।

तलत महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम आपके जो उत्तर हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गायी जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आई, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लता जी, तलत अजीज की आवाज बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ, काफिया, मिसरा, गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूँ इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गैर फिल्मी गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्ण प्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी जहां फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गजल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गजलें अंतर्मन की पीड़ा तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गजल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आरा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गजल की ये गजल मैं आपको सुनवा रही हूं। बोल है नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गजल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गजल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गजल की शर्तों में आती है। ये गजल उस नियम, वो दायरा जो है गजल का, उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गजल, फिल्म का नाम गजल, आवाज लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूंगी बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुएं यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आंखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियां, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गजल क्या है आपने उसको महसूस किया। आज के इस कार्यक्रम को, इस सफर को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन

0: साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधि

0: हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह

0: 10 बजे भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जो पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लेप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का दो गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
3: मोहब्बत कहाँ

उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नव नियुक्त महाधिवक्ता रोहिताशय रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। धनबाद के निरसा विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद एसएसपी से लिखित शिकायत कर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है। गढ़वा जिला नियोजनालय द्वारा आज जिला मुख्यालय स्थित गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें शामिल विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा 139 युवक युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया। इससे पूर्व रोजगार मेले का उद्घाटन उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने संयुक्त रूप से किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
4: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं। आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जानवी रंबाड़े और बनर्जी।

और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं। ये इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जैकी।

यह अवस्थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गोलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

हरिसिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले, आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है

शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दुगाना।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
2: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
1: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
3: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
4: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
3: ओह, हमारे साथ ये यज्ञ सेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीर सेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञ सेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
1: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंगवंश

के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी। उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: खुद अपनी समझो।
1: मालविका अब तू जा।
2: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर देखिए।
3: मैं क्या पूछूंगी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
4: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका है महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
1: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
2: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
3: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
4: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
2: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
1: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
2: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
1: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
5: जो आज्ञा।
2: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
4: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया हो।
2: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
1: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
4: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
1: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्य का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रनिवास की तमाम रानियों

0: से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
1: उपाय? उपाय? हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
0: हम उसे मालामाल कर देंगे।
1: बकुला वलिका, समझ गई ना? यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ।
2: आए गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ,
3: अरे मालविका, तुम आ गई?
4: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
3: ओह, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
4: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
3: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
4: जो आज्ञा।
3: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
1: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। आ हा हा, देखिए तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
0: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो क्या? ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं उतने ही कठोर होते हैं।
1: महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा। आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा?
1: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
1: हाँ हाँ। अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
0: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
1: अरे कैसी अचरज की बात है कि
0: क्या हुआ?
1: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
0: क्या क्या मालिका आ रही है?
1: और क्या,
0: तो समझो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
1: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
0: ये सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं। गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
1: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज।
0: मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है।

0: मालिका अपने आप कुछ कह रही है। आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
1: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
0: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
2: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ दे तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। पूछे यूं सता कर तुझे क्या मिल रहा है।
0: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है। मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं। अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है।
1: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
0: अरे, ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है।
1: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
0: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
3: और नहीं तो क्या आपके लिए।

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। लो सखी, हृदय ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई कोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मन चाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढें।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहाँ अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: है? मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पाँव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साज श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
1: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
0: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
1: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
0: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
1: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
0: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
1: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर दो।
0: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
1: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
0: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
1: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
0: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
1: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
0: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
1: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
0: ये प्रेम पगे शब्द
1: स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
0: सच?
1: बैसकी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाएगी।
0: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे, क्या सोच रहे हो?
1: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
0: अरे, मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावलिका, वाह मित्र। बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज, उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
3: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
0: आई गौतम, महाराज भी
3: क्यों रही बकुलावलिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
0: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
2: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
3: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
1: सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
0: अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
2: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
5: मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसकी खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनः निरीक्षण कार्य के समय पूरा हो सके। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। खूंटी स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
2: जी। दोनों गाने वही थे,
3: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, थी कि चुनरिया पर ही आपको गीत लिखा?
2: मैंने खुद लिखा, उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5000 चुनरिया तो नहीं है।
1: हाँ।
0: और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया,

0: जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी,
1: अच्छा
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग,
1: हाँ
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बैल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो
1: सर,
0: जगह ही रहता था
1: अरे
0: मतलब, और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के। हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई,
1: वो
0: तो
1: कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने
0: जी
1: कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए।
0: जी
1: इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नय्यर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए लेकिन मैंने सीखा बहुत, और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो ना ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का
1: जी
0: अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी जी
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है लेकिन चलो मैं बात करता हूं। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूं। और तो करना मैंने कब मना किया है, मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा?
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं, उसमें
1: हाँ
0: क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते।
1: जी।
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, क्या रे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ,
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत।
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसिज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ,
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा जी,
0: मैं बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए, तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था कि चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली
1: शाह।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लक्की सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी
1: ये
0: जी
1: गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें, ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी,
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए। तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं?
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। तो क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है। मैं
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है, उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: मैं आ जाऊंगा, तब वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे। और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी
1: नहीं।
0: बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने, और आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना?
1: जी,
0: तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़े आपके गीतों को?
1: नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
0: हाँ
1: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है।

0: मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं। आप कोई सिचुएशन बताओ, मैं घर आ जाता हूँ, मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं? डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
0: नहीं
1: आपके
0: नहीं
1: गीतों
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
1: हाँ
0: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, बात नहीं है। लेकिन अब वो जो चली आ रही है, वो चली आ रही है।
1: हाँ हाँ
0: तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई, तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है। मैं सक पका गया, और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा, तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
1: तो
0: मैंने
1: हाथों
0: लिखा,
1: हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपको
0: लिखवा देता।
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है ये
0: हाँ
1: एक्टर है
0: जो
1: ये
0: भी
1: एक्ट्रेस है।
0: सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत।
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में आप
0: हर
1: रहते
0: रिकॉर्डिंग
1: हैं?
0: में मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग खोते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती हैं।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
1: नहीं।
0: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा, जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद
0: एक
1: का?
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं, इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं, वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी।
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
0: ओडली,
1: ओडली म्यूजिक,
0: चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र अभी आप
1: जिक्र
0: कर रहे
1: किया
0: थे।
1: तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार। उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
0: अच्छा।
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है वो है।
0: जी जी।
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या,
0: हाँ।
1: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूं कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूं, बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
0: वाह अद्भुत,
1: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदरकांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
0: हाँ,
1: लेकिन मेरी औकात ही क्या, मैं क्या करूंगा। कुछ भी नहीं कर
0: उनकी
1: पाऊंगा,
0: महानता देखिए आप अमित
1: लेकिन
0: कुमार
1: उनकी
0: साहब।
1: ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया, तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
0: जी जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: उन्होंने क्लियर किया
0: कि मैं कुछ नहीं लेने
1: मैं
0: वाला,
1: कुछ नहीं लेने वाला।
0: बहुत बड़ी बात सर,
1: तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई है और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं,
1: एक गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना नहीं लिखूंगा।
0: क्या लिखूंगा फिर? तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा? हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर, और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन बट AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फुवड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
0: जी जी।
1: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया। जो नए गीतकार, युवा गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी जी।
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी,
0: देखिए आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है।
1: बिल्कुल।
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया
1: दूसरे गाने का।
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए। 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है
1: जी।
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ।
1: अच्छा।
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके उंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है, और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं था, अरे यार मैं तेरे को ही फोन लगा रहा हूं तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूं तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ। अंदर गया, बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ना कुछ
1: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी, विविध भारती, यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
1: जी
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा है, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सब से मैं मिला हूँ।
1: जी और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित आधार सेवा केंद्रों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के धुरमाडी गांव के पास तेज रफ्तार वाहन और बाइक की टक्कर में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग एक घंटे तक सड़क जाम कर दी। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। खूंटी स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दिल का खोना कभी आसान नहीं होता, उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहां। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती है, जैसे आवाज लगाती हैं कभी देखो तो यहां। इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

ये कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसी रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

वो रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है। दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद फखरुल हसन बना रहूंगा इस सभा में आपके साथ रात्रि 11:10 तक। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 से आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। चर्चा होगी श्री विधि से धान की खेती, साथ ही चर्चा में सुनिएगा लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती आय का साधन। भेंट वार्ता आप सुनेंगे एक सफल किसान से खरीफ की खेती एवं मधुमक्खी तथा मछली पालन पर। भेंट वार्ताकार हैं शिवनाथ कुशवाहा गोंदा मेराल गढ़वा से। भेंट करता है संतोष कुमार। ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम आप एक और सुनेंगे जिसमें चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज की बात में बकरी पालन के अनेकों लाभ। भेंट वार्ता आप सुनेंगे खरीफ के उन्नत कृषि यंत्र। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा कृषि विशेषज्ञ पलामू। भेंट करता है संतोष कुमार। आज की नसीहत में अंतर्वर्ती खेती से लाभ। आज का मौसम और जानेंगे आज के बाजार का भाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर गीत गजलों का कार्यक्रम होगा स्वरांजलि। 7:45 पर कार्यक्रम विज्ञान जगत में आज आप सुनेंगे ई कचरा का सदुपयोग संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है। शाम 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:30 पर विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इंद्रधनुष।

शाम 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेज़ी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

निगंधा को हम पेश करेंगे रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

आज की शाम युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आप हमेशा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ। चलिए दोस्तों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे निस्वार्थ कर्म सफलता के लिए टॉनिक, और इसी कार्यक्रम में आदिति चंद्रा की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान, और कुछ मनोरंजन भी हम आपका करवाएंगे फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। दोस्तों, जब हम निस्वार्थ कर्म या निष्काम कर्म की बात करते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फायदे नुकसान का विचार किए बिना ना तो कर्म करता है और ना ही कोई कार्य करना चाहता है। जीवन की कोई ना कोई आवश्यकता मन में इच्छा पैदा करती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए ही व्यक्ति कार्य करता है। फिर ये कैसे संभव है कि हम निस्वार्थ या निष्काम कर्म करें? दोस्तों, किसी भी कार्य के दो ही नतीजे होते हैं, सफलता या असफलता। असफलता व्यक्ति को दुख देती है, इसलिए हर व्यक्ति असफलता के दुख से बचना चाहता है और सफलता का सुख पाना चाहता है। किंतु सफलता का अपना अलग विज्ञान है। दोस्तों, सफल होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो मन, कर्म और वचन से जो है कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित होने की है। इसके साथ ही आवश्यक संसाधन, परिस्थितियां और हमारी कार्य क्षमता का भी सफल होने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, प्रायः होता यह है कि सफलता और असफलता का ये दुख सुख दुख लगातार हमारे मस्तिष्क में कौंधता रहता है और हम कर्म करने पर पूरा ध्यान

नहीं दे पाते हैं। परिणाम ये होता है कि हम असफल हो जाते हैं और सुख की चाह में दुख उठाते हैं। सफलता के इसी रहस्य को श्री कृष्ण ने जी ने गीता में अर्जुन को समझाया है, अर्थात है अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्मों के फल का कारण मत हो और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। दोस्तों, महात्मा गांधी का कथन है, सत्कर्म एवं दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। कृष्ण कर्म के विषय में दो तथ्यों को स्पष्ट कर देते हैं। एक तो कर्म के फल, सफलता असफलता, सुख दुख के विषय में मत सोचिए, क्योंकि इससे आप काल्पनिक सुख दुख से उत्तेजित नहीं होंगे और शांत मन से पूरी शक्ति के साथ जब कर्म करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही है। कोई व्यक्ति फल के बारे में ना सोचने की बात सुनकर कर्म से विमुख ना हो जाए, इसलिए श्री कृष्ण साथ ही दूसरी बात भी कह देते हैं कि कर्म से विरक्त नहीं होना है, क्योंकि कर्म से कोई व्यक्ति विरक्त हो ही नहीं सकता। ना चाहते हुए भी उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोना, जागना आदि भी तो स्वाभाविक कर्म ही हैं दोस्तों। इसलिए सफलता पाने के लिए ये आवश्यक है कि हम फल के बारे में सोचकर व्यर्थ समय नष्ट करने की अपेक्षा पूरे मनोयोग से कर्म को पूजा समझकर करें। कर्म ही पूजा है दोस्तों। इन चार शब्दों का भावार्थ अपने आप में इतना गूढ़ रहस्य समाहित किए हुए है कि यदि व्यक्ति इसे समझ सके तो वो कर्म करते करते महानता के उस लोक में विचरण करने लगेगा जहां सफलता स्वयं ही उसका इंतजार करती होगी। दोस्तों, मानव को कर्म करने के लिए बनाया गया है। हमारा कार्य तो सिर्फ इतना ही है कि फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म को पूरी जो है किए बिना अपने कर्म को पूरी लगन एवं निष्ठा से करते जाएं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मानसिक स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि उसे सफल होने से रोका नहीं जा सकता। उसमें अद्भुत शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास स्वतः ही हो जाता है। सच तो ये है दोस्तों कि जीवन जो हम जीते हैं ये भी कर्म का ही साक्षात स्वरूप है। यदि कोई व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर खाली बैठ जाता है, उद्यम करना त्याग देता है, तो उसके जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है। जबकि सही अर्थों में जीवन तो चलने का नाम होता है, थक कर या हार कर बैठ जाने का नहीं। मानव पूर्ण मनोयोग से कर्म तभी कर सकता है जबकि उसकी आंखों में कोई स्वप्न भी हो। ठीक ही तो है, इस प्रकार कर्म के लिए लक्ष्य का होना तो आवश्यक है ही, लेकिन उसका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये भी आवश्यक है दोस्तों कि हम निस्वार्थ होकर पूरी लगन से परिश्रम करें और परिणाम की चिंता ना करें। दोस्तों, एक गांव में एक महात्मा रहते थे। उनका एक शिष्य था, नाम था रामफल। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आपने मुझसे 15 वर्ष पहले कहा था कि जो लोग निस्वार्थ होकर गरीबों, दलितों एवं ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं उनके पीछे पीछे सदैव सामाजिक सम्मान भी आता है। मैं तो पिछले 15 वर्षों से लगातार दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे तो सामाजिक सम्मान नहीं आया। गुरुजी ने कहा, ठीक कहते हो रामफल, तुम्हारी निगाह सदैव इस तरफ थी कि कब सामाजिक सम्मान आता है। इसी स्वार्थ ने तुम्हारे सामाजिक सम्मान को बंदी बना रखा है। यदि सम्मान पाना है तो इस स्वार्थ को मार दो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिए, परिणाम के बारे में विचार करने से एक और सबसे बड़ी हानि यह है कि आप ये भी अवश्य सोचेंगे कि कहीं लक्ष्य नहीं मिला तो क्या होगा। दोस्तों, इससे भी हानि वही होगी कि आप अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग न कर पाएंगे, और दूसरी हानि है कि नकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आपका कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि कर्म करते रहिए, विश्वास कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। कठिन परिस्थितियां आने पर भी आपको परेशान एवं निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य को भली प्रकार निभाते रहना चाहिए। विश्वास रखिए, परमात्मा बहुत दयालु हैं, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। लेकिन सफलता पाने के लिए
हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। सच्चे मन से किया गया कार्य आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा। दोस्तों, डेनियल स्कॉर का कथन है, तुम्हें मानवता के प्रति विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सुधाम में समुद्र के समान है, जिसकी कुछ बूंदें गंदी होने पर भी समुद्र गंदा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय का कथन है, अधिकतर लोग अपनी सुविधा अनुसार मानवीय मूल्यों को बदलने में विश्वास रखते हैं, पर स्वयं को बदलना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा किया हुआ कर्म ईश्वर की पूजा के समान है, जिसका सुफल आपको सफलता के रूप में प्राप्त होता है। प्रायः देखा भी जाता है कि कुछ व्यक्ति अपने कार्य में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं रहता। वे पूरी कुशलता से अपना कार्य करते जाते हैं। ऐसे लोग महान सफलता को प्राप्त होते हैं। उनका मन दिव्य आनंद से भर जाता है, क्योंकि उन्हें अपने कार्य से ही इतनी संतुष्टि मिलती है कि परिणाम के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम तो उनके पास खुद ब खुद खींचा चला आता है। दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और संतों को अपने कर्म में इसी अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे मानव, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म की इसी पूजा ने आदिम युग से लेकर आज के प्रति आधुनिक विश्व की रचना तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका ऐसा विश्वास कि सबकी भलाई में ही आपकी अपनी भलाई एवं खुशहाली है, आपको अद्भुत सफलता के दर्शन कराता है। दूसरों की सेवा एवं सहायता करने का महान सिद्धांत व्यक्ति की सफलता का मार्ग स्वयं ही खोल देता है। जिसने कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से मदद की है, उसने मन के इस सुखद एहसास को जरूर छुआ होगा। बस मन में हमेशा अच्छे विचार रखें, अच्छा गुमान रखें। लोगों के प्रति भी आप जो हैं अच्छा गुमान रखें, अच्छी सोच रखें और आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, कोशिश करते जाएं, एक न एक रोज़ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये हुई कुछ बातें, चलिए अब आपको सुनवाते हैं।

0: अब आइए दोस्तों, आदिति चंद्रा की वार्ता सुनते हैं। विषय है राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान।
1: हम सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और इस समय हमारे देश को स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। स्मार्ट भारत का अर्थ है एक ऐसा देश जहां पर नागरिक तकनीकी रूप से सक्षम हो, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं सभी तक पहुंचे और जहां का प्रत्येक युवा अपने देश के

0: विकास के महत्वपूर्ण योगदान दे सके। युवाओं को किसी भी राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि युवा ही वो शक्ति है जो देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की पीढ़ी न केवल तकनीकी रूप से सशक्त है, बल्कि वो बदलाव की भूखी भी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में युवा जानकारी और ज्ञान के महासागर में गोता लगा रहे हैं, और ये जान ज्ञान ही उन्हें स्मार्ट भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा है। शिक्षा और तकनीकी कौशल। युवाओं का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर युवा न केवल अपने करियर को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, बल्कि देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आज के समय में डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे। नवाचार। स्मार्ट भारत के निर्माण में युवाओं की सोच में नवाचार की भावना होती है, जो नए नए विचारों और योजनाओं को जन्म देती है। स्टार्टअप्स के माध्यम से युवा नए अवसरों का सृजन कर रहे हैं, जिससे रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। सामाजिक बदलाव। युवाओं की भूमिका केवल तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक बदलाव के भी प्रमुख कर्णधार हैं। युवा सामाजिक समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए नए नए उपाय ढूंढते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में युवाओं की भागीदारी सराहनीय है। तकनीकी नेतृत्व। स्मार्ट भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है तकनीकी नेतृत्व। आज का युवा पीढ़ी डिजिटल युग में भी जी रही है, जहां स्मार्टफोन, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। ऐसे में युवाओं को नवीनतम तकनीकों में निपुण होना चाहिए और नए आविष्कारों में योगदान देना चाहिए। जैसे जैसे भारत डिजिटल क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे युवाओं को इन क्षेत्रों में नेतृत्व करना चाहिए। युवा इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स और इनोवेटर्स का एक मजबूत नेटवर्क भारत को दुनिया में अग्रणी बना सकता है। स्टार्टअप संस्कृति। भारत में स्टार्टअप का उदय एक सकारात्मक संकेत है कि हमारे युवा रोजगार के सृजनकर्ता बन रहे हैं, न कि सिर्फ नौकरी चाहने वाले। स्टार्टअप संस्कृति में नवाचार, जोखिम उठाने की क्षमता और समाज की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में काम करने की इच्छा होती है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो स्मार्ट भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। भारत को स्मार्ट और प्रगतिशील बनाने के लिए युवाओं को वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझना और अपनाना होगा। उन्हें यह जानना होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और उन नवाचारों को भारत में लाने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और अनुभव प्राप्त कर वे भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक रूप से जागरूक युवा ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रख सकते हैं। स्मार्ट भारत के निर्माण में युवाओं का राजनीतिक रूप से जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना और देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार निभाना युवाओं की जिम्मेदारी है। निष्कर्ष। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्मार्ट भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अनिवार्य है। आज के युवा ही कल के भारत के नए दिशा में होंगे। अगर हम सभी युवा अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत वास्तव में एक स्मार्ट और विकसित देश बन सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे अदिति चंद्रा की वार्ता। विषय था राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान। और इसी के साथ दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों को सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन करते हुए इसे धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की प्रेरणादायी केंद्र बताया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित असांगी चेक डैम में नहाने के दौरान दो स्कूली छात्र गहरे पानी में डूब गए। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक छात्र का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे छात्र की तलाश है। रामगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सरोज सिंह ने कहा कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से 6 जुलाई उनके जन्म दिवस तक पूरे देश में विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सम्मेलन में बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे श्री विधि से धान की खेती के बारे में।
1: जी हाँ श्रोताओं, धान उगाने की ये उन्नत तकनीक है श्री विधि, जिसमें कम बीज और पानी का उपयोग करके

पारंपरिक खेती से कई गुना अधिक उपज प्राप्त किया सकती है। इसमें प्रति एकड़ मात्र 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और पौधों को 25x25 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपा जाता है। कुछ खास बातें हम करते हैं श्री विधि से धान की, धान उगाने के तरीके।

0: से खेत में तुरंत रोपें। पारंपरिक विधि के विपरीत श्री विधि में प्रति स्थान केवल एक ही पौधे सिंगल सीडलिंग की रोपाई की जाती है। पौधों को कतारों के बीच 25x25 सेंटीमीटर लगभग 10 इंच की दूरी रखी जानी चाहिए। इसके लिए रस्सी या विशेष मार्कर का उपयोग किया जाता है।
1: बात करते हैं पानी का प्रबंधन की, तो इस विधि में खेत को हमेशा पानी में भरकर यानी जलमग्न नहीं रखा जाता है। खेत में नमी बनाए रखें और आवश्यकता के अनुसार ही आप सिंचाई करें। जब खेत में दरारें पड़ने लगे तब हल्की सिंचाई करें, इससे जड़ों का विकास बहुत ही मजबूत होता है। कोनोवीडर का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे भी आप निराई गुराई। पौधों के बीच चौड़ी जगह होने के कारण खर पतवार अधिक उगते हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए रोपाई के 15, 30 और 45 दिन के बाद खेत में कोनोवीडर या अंबिका वीडर मशीन चलानी चाहिए। वीडर मशीन चलाने से खर पतवार मिट्टी में ही दबकर खाद बन जाते हैं और मिट्टी में हवा का संचार होता है, जिससे पौधों की जड़ें तेजी से बढ़ती हैं। अब बात करते हैं जैविक खादों का महत्व के बारे में, तो श्री विधि में रासायनिक खादों की जगह अधिक से अधिक जैविक खाद या कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है।
0: श्री विधि के कुछ मुख्य लाभ हम किसान भाइयों आपको बता दें। पारंपरिक खेती की तुलना में पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। लगभग 30 से 60% तक सिंचाई के पानी की बचत होती है। बीज की लागत बेहद कम हो जाती है। पौधों में कल्ले अधिक यानी औसतन 40 से 50 निकलते हैं, तो कई सारे इसके फायदे हैं जो हमने आपको बताए। इस विधि में

हम बात कर रहे थे श्री विधि से धान के गाने की तकनीक, आइए सुनते हैं एक लोकगीत भरत सिंह भारती की आवाज़ में।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भरत सिंह भारती की आवाज़ में लोकगीत, और आइए आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। एक सफल किसान शिवनाथ कुशवाहा, जो गोंदा मराल गढ़वा के रहने वाले हैं, उनसे भेंट। विषय है खरीफ की खेती और मधुमक्खी तथा मछली पालन। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं गढ़वा जिला के मिराल प्रखंड के गोंदा गांव की एक कृषक, जो अभी खरीफ की खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं और साथ ही मधुमक्खी पालन भी बृहद पैमाने पर ये करते हैं। आप हैं शिवनाथ कुशवाहा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अभी आप खरीफ की क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, खरीफ में क्या क्या फसल लगाए हैं आप?
2: सब किसान भाइयों को नमस्कार। हमारा नाम शिवनाथ कुशवाहा है, हम गोंदा गांव के रहने वाले हैं। अभी हम धान के रोपाई चल रहा है और उसके साथ मकई भी लगाए हैं, मकई मूंगफली भी लगाए हैं।
1: अच्छा।
2: और टमाटर का बिचड़ा तैयार कर दिए हैं और उसके साथ बैंगन का भी बिचड़ा तैयार किए हैं, मर्चा का भी किए हैं। और धान का रोपाई जब भी बंद होगा वैसी टमाटर का ये खेती लगाने के लिए चालू कर देंगे, यही कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो अभी बादाम का भी
2: जी बादाम बरजाम जो आपका अगहन के समय में हो जाता है।
1: कुवार कितना बादाम लगाए हैं?
2: लगा है 2 बीघा में।
1: 2 बीघा में बादाम। हाँ। बहुत सुंदर। आप कितना निकल जाएगा लगभग?
2: गर्मी वाला भी लगाए थे सर 2-3 बीघा में, लेकिन उससे भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। और ये किसान भाइयों को ये होता है कि बादाम लगाने से नीलगाय जो है ना, नीलगाय से बहुत प्रकोप में किसान ये तब परेशान है, तब नीलगाय जो है बादाम नहीं नुकसान करता है और वो जमीन में बैठता है। और गर्मी के समय में कम से कम पानी लगता है उसमें, महीना में 3 या 4 पानी लगता है मुश्किल से, और इसी में बादाम बैठ कर बढ़िया अच्छा से तैयारी हो जाता है। बादाम बेच करके उसी में धान लगा रहे हैं।
1: अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, धान की भी खेती कर ली?
2: हाँ जी, कर रहे हैं, अभी किए नहीं है। अच्छा। मैंने कर रहे हैं।
1: तो रोपाई वगैरह हो गया?
2: रोपाई अभी चल रहा है।
1: रोपाई हाँ,
2: 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा।
1: अच्छा।
2: और वो ये जो बादाम का जो डंठल होता है, कर्मा में जो बादाम लगाए थे उसका डंठल जो होता है वो पूरा सड़ के वो खाद के ये रूप में आता है, उसमें बहुत सा ये मैंने पोषक तत्व होता है। उससे आपको डीएपी का कम मात्रा देना पड़ेगा, यूरिया या डीएपी का, उसमें खाद का आप ज्यादा मात्रा पड़ जाएगा।
1: अच्छा।
2: और धान आपका मोजार बढ़िया अच्छा से करेगा। हाँ, ये करना है।
1: और इसके साथ साथ खीरा वगैरह भी लगा चुके
2: अभी
1: हैं।
2: खीरा लगाए हैं, बरसाती बरसा रानी खीरा एक आता है उसी को लगाए हैं। खीरा है, करेली है, और अभी हमारे पास नेनुआ लगाए हैं करीब 10 कट्ठा में।
1: 10 कट्ठा में?
2: हाँ, 10 कट्ठा में लगाए हैं, 1.5 क्विंटल का लगभग निकल जाता है एक दिन बीच करके
1: 1.5 क्विंटल निकलता है।
2: जी अभी रेट भी उसका 40 रुपये केजी है।
1: अच्छा।
2: और गढ़वा ला करके
1: तो अभी जो किसान भाई, चूंकि देखिए बारिश इस बार जिस तरह से हुई, तो हमारे बहुत से किसान भाई जो रोपाई किए बीजों की, तो या तो उनका अधिक बारिश के कारण गल गया, उनका पौधा निकल नहीं पाया, बहुत से सड़ गए और कुछ निकला भी, तो क्या अभी हमारे ग्रामीण बंधु भी लगा सकते हैं बीजों को?
2: जी सर, अभी जैसे अभी सब सब्जी का खेती का करने के लिए बीजा तैयार कर सकते हैं सर, ऊपर से पाल दे देंगे। और नई घर में पाल है तो जो साड़ी के यहाँ हर घर में साड़ी होता है उससे बना करके बांस दू को गाड़ करके ऊंचा कर करके उससे भी हम अच्छा से अच्छा बीजा तैयार कर सकते हैं। और फिर बीजा
1: अभी समय है ना,
2: अभी समय है सर, अभी समय है, आराम से उसको रोप सकते हैं। अभी का लगा लो टमाटर आपको महंगा के रेट में जाएगा।
1: अच्छा।
2: हाँ, और फिर लास्ट में जब खेती आ जाएगा सब वो लोग करने लगेंगे तो उस समय सस्ता हो जाता है। अगले साल तो आपका 5 रुपये लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, किसान तो सब खेत में हम लोग छोड़ दिए थे। हाँ, तो ये सब है कि आगे की खेती करने से हम लोग ये बढ़िया प्रॉफिट।
1: तो अभी भी हमारे ग्रामीण बंधु लगा सकते हैं?
2: हाँ जी, अभी
1: समय
2: कर सकते हैं
1: जी। और रही बात अन्य सब्जियों की, तो बैगन वगैरह का बिचड़ा वगैरह सब तैयार है,
2: जी
1: सिर्फ उसको लगाने की आवश्यकता है,
2: ले सकता है।
1: और धान की खेती में रोपाई वगैरह का कार्य भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त आप और क्या करते हैं?
2: इसके अलावा मशरूम भी करते हैं सर, ये मछली भी डाल दिए हैं,
1: मछली का जीरा डाले हैं, और अपना तालाब है,
2: अपना तालाब जमीन खरीद के अपना तालाब बनाए हैं।
1: अच्छा।
2: उसी में डाल दिए हैं और उसके साथ साथ ये मशरूम का भी बीज लगाए हैं, मशरूम शुरू अब करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मधुमक्खी है,
1: मधुमक्खी पालन।
2: हाँ, या अभी इसके साथ ही हमने आम अमरुद लेम्बो या जो पौधा है उसका कलम भी तैयारी करते हैं, मैंने अपने किसानी से लगे रहते हैं।
1: हाँ। तो ये मछली पालन की जहाँ तक बात आती है, तो समन्वित मछली पालन कर रहे हैं या सिर्फ मछली पालन एक?
2: नहीं, एक तालाब जमीन खरीद के 10 कट्ठा और उसी में हमने तालाब खन के उसी में हमने मछली पालन कर रहे हैं। उसके चारों तरफ जो मेड़ा है, बंधा है, उसके चारों तरफ ने हमने आम लगा दिए और लेम्बो का पौधा लगा दिए और उसमें मौसमी लगा दिए, तरह तरह के पौधा उसमें लगा दिए, ताकि उसका बांध से भी कुछ आमदनी आता रहे और मछली से भी आमदनी आए, मैंने परेशानी नहीं आना पड़ेगा।
1: तो मतलब एक तरह से मछली पालन में भी आए
2: जी जी
1: आप प्राप्त कर रहे हैं, है ना?
2: प्रशिक्षण लेकर।
1: कौन सी मछलियां डालते हैं?
2: रेहू, कतला, कोमलकार, गिलसकार, यही 4-5 वैरायटी का मछली।
1: आप पर कितने वर्षों से कर रहे हैं आप?
2: लगभग 7-8 साल से।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो फिर मछलियां बेचते कहाँ हैं?
2: बेचते हैं वो आपको, जब मछली तैयार हो जाता है तो व्यापारी जो आते हैं लेने के लिए वो अपने से मार के और 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो ले जाते हैं।
1: अच्छा,
2: 100 रुपये 80 रुपये। हाँ, हमको मार के गाँव बेचना नहीं है।
1: अच्छा,
2: अपने से मार के वो ले जाते हैं।
1: अच्छा,
2: 80 या 100 के 90 का यही रेट देंगे।
1: कितने आकार में तालाब होगा?
2: तालाब वही 10 कट्ठा के में किए हैं।
1: 10 कट्ठा में?
2: हाँ।
1: तो कितना उत्पादित कर लेते होंगे लगभग?
2: वो नापे तोले तो नहीं सर,
1: मैंने एक अंदाज की इतना क्विंटल मेरा निकल जाता है माल
2: लगभग, मैंने हम उतना अंदाज तो नहीं किए हैं लेकिन कम से कम 5-6 क्विंटल निकल जाता है।
1: साल भर में
2: नहीं, एक सीजन में,
1: एक सीजन में,
2: सीजन में करते हैं।
1: तो अभी 5-6 क्विंटल निकल जाएगा
2: जी।
1: अभी जो अंगुलिकाएं जो आप डाले हैं वो कब तक तैयार होकर के निकले?
2: वो हम लोग फागुन चैत में उसको मारते हैं।
1: अच्छा, फागुन चैत में आ जाएगा।
2: चैत के महीना में उसको, पानी जब कम हो जाता है तब उसको मार के।
1: तो ये तो बात होगी मछलियां की, इसके अलावा मधुमक्खी पालन से भी आप जुड़ गए?
2: जी, मधुमक्खी पालन में भी जुड़े।
1: तो अभी मधुमक्खियां पाल रहे हैं
2: जी?
1: अच्छा, कितने बक्से हैं
2: अभी हमारे पास? 30 बक्से हैं।
1: अच्छा।
2: और बक्सा हमने प्रशिक्षण दे करके किसान को, और बक्सा को उसके यहाँ दे देते हैं, बेच भी देते हैं।
1: अच्छा।
2: और उसको सिखाते भी हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, इसे कहीं कहीं कैठो हैं जो, नहीं तो बक्सा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हीं लोग के हम देते हैं और सिखाते भी हैं। और हम चाह रहे हैं कि ये किसान भाई बक्सा, एक दो बक्सा रख के अपना घर में करें, खेती गृहस्थी करें, लेकिन मधुमक्खी का भी करें, उसे लाभ होगा, खाने के लिए होगा और उसको नुकसान नहीं होगा, यदि अधिक से अधिक फायदा होगा मधुमक्खी।
1: बिल्कुल सही बात। अभी कैसे बेच रहे हैं?
2: अभी 400 रुपये की जो घर से बिक रहा है।
1: 400 रुपये किलो?
2: जी जी।
1: अब घर से ही लोग चले जाते हैं?
2: हाँ, घर से लोग चले जाते हैं। अभी डाल्टनगंज के लोग गए थे, हर जगह के लोग ले आते हैं और उसको दावा के लिए, खाने के लिए, कई गो जिसको पेट निकल जाता है वो उसको में ये
1: काम आता है
2: उन लोग भी ले आते हैं,
1: चर्बी गलाने के लिए।
2: हाँ, तो ये उन्हीं लोग से हम जानकारी लिए कि ये पेट जो बाहर को निकल जाता है ना बैठे बैठे गद्दी पर, तो उसको करने के लिए ले आते हैं। अभी डाल्टनगंज के बहुत साहब लोग गए थे, मास्टर लोग, उन्हीं लोग बताने लगे,
1: मतलब धीरे धीरे सब ग्राहक अब वहाँ वो खुद पहुँच जाते हैं। जहाँ मधुमक्खी पालन आप कर रहे हैं वहीं से लेकर चले जाते हैं। तो मधुमक्खियों से भी आप आय प्राप्त कर रहे हैं निश्चित रूप से। ये एक सफल कृषक ही ये सारे कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, किसान भाई बहन, और खेती बाड़ी के अतिरिक्त हमें आवश्यकता है कि हम पशुपालन हो गया, मछली पालन या फिर मधुमक्खी पालन जैसे स्वरोजगार से जुड़कर अपनी खेती बाड़ी जो है उसको सुदृढ़ रख सकते हैं हम। और प्रशिक्षण की बात आपने की थी कि आप प्रशिक्षण ले करके तब ये सारा कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किए?
2: गढ़वा विज्ञान केंद्र से लिए थे और प्रशिक्षण लिए थे, उसी से लेकर के बकरी भी रखे हैं 10 ठो।
1: बकरियाँ भी?
2: बकरी भी रखे हैं।
1: अच्छा।
2: मैंने हमारे हिसाब किताब में मिक्सित खेती है और घाटा नहीं जाता है, कुछ न कुछ उससे आय मिलबे करता है।
1: बकरियों को तो ऐसे भी एटीएम माना गया है।
2: भैंस भी है?
1: भैंस भी रखे हैं।
2: भैंस रखे हैं।
1: अच्छा।
2: 2 ठो।
1: अच्छा।
2: और 1 ठो गाय रखे हैं।
1: वाह।
2: और 10 ठो बकरी रखे हैं।
1: बहुत सुंदर।
2: मैंने
1: चारा पानी तो सब इसी खेती,
2: सारा पानी खेती से होता है, कोई खरीदना हमको कुछ नहीं है।
1: चारा भी खरीदने की आवश्यकता नहीं,
2: कुछ नहीं खरीदने की आवश्यकता है,
1: बस उसको खाली देख रेख करिए समय समय पर।
2: देख रेख करना है और उससे आपको सब घर ही हो जाता है।
1: आवास की आवश्यकता है, आवास बना दिया होंगे?
2: नहीं अभी आवास तो नहीं बना है, जमीन खरीदे हैं।
1: नहीं नहीं मतलब इन लोग के रहने के लिए,
2: इन लोग के रहने के लिए व्यवस्था तो बना नहीं पड़ेगा।
1: हाँ
2: हाँ व्यवस्था रखिएगा तब ना रहेगा। हाँ,
1: तो वो भी आवास भी इन लोग का बनाया हुआ है।
2: जी जी।
1: और प्रशिक्षण लेने गए थे तो कितने दिन के प्रशिक्षण प्राप्त?
2: प्रशिक्षण 7 दिन का लिए थे हमने। और 7 दिन का लिए थे तो उसमें हमने प्रशिक्षण जब लिए थे तो उस समय हम 40 वो जब दिल्ली बी बोर्ड से आए थे प्रशिक्षण देने के लिए तो 40 वो किसान थे तो उसमें हम भी एक बैठे थे। सर लोग बताए कि आप भी प्रशिक्षण ले लीजिए। हाँ। तो उसी में लिए और हम तुरंत शुरू किए। उन लोग नहीं किए तो नहीं सीखे और हम लोग तुरंत शुरू किए तो आज कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं।
1: सही बात है
2: जी।
1: और
2: दूसरे किसान के भी सिखा के भी देते हैं।
1: मतलब कृषकों को भी प्रशिक्षण देते हैं।
2: अब मशरूम के लिए हम देख रहे हैं कि 300 महिलाओं को हमने 300 से बेसी के सिखा करके और ये बीज रांची से मंगाते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से और ला के देते हैं। उन लोग भी ये करना शुरू कर दिया क्योंकि अपना रोजगार में जुड़ने से लिए तो पैसा का आय मिलते रहता
1: है। अच्छा स्वयं सहायता समूह भी यहाँ है?
2: जी स्वयं सहायता समूह
1: भी है तो वहाँ भी महिलाओं को?
2: जी जी उसी प्रकार से किए हैं।
1: अच्छा कितने स्वयं सहायता समूह हैं गोंदा में?
2: पूरा तो गोंदे भर में नहीं है सर, दूसरों जगह
1: तो वहाँ के भी लोग जुड़े हुए हैं।
2: जी बहुत जगह से जुड़े हुए हैं और जब बीज लेके हमने जाते हैं तो उन लोग सभी लोग ले आते हैं। कई जगह के किसान हैं वो बीज ले आते हैं मशरूम का स्पॉन और अपने यहाँ घर करते हैं।
1: आप थे गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड के गोंदा गाँव के एक सफल कृषक शिवनाथ कुशवाहा जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां साझा की, स्वरोजगार से जुड़ी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

हमारे ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे शिवनाथ कुशवाहा एक सफल किसान से ली गई भेंट। विषय था खरीफ की खेती, मधुमक्खी पालन और मछली पालन। बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और आगे चर्चा करते हैं लतर वर्गीय सब्जियों की खेती आय का साधन। ग्रामीण भाइयों, लौकी, करेला, तोरई, खीरा और कद्दू की खेती

0: किसानों के लिए बेहद मुनाफे का सौदा है। हम बात कर रहे हैं लतर वर्गीय सब्जियों की खेती की। यह खेती कम लागत, लंबे उत्पादन समय और उच्च बाजार मांग के कारण भारी मुनाफा देती है। बेल वर्गीय सब्जियों की खेती के कुछ फायदे हैं। निरंतर और लंबा उत्पादन होता है इसका। इन सब्जियों की बेलें कई महीनों तक फल देती हैं। एक बार फसल लगाने के बाद किसान एक लंबे समय तक नियमित रूप से तोड़ाई करके बाजार में बेच सकते हैं
1: और कम लागत में भी ज़्यादा मुनाफा होता है। अन्य सब्जियों की तुलना में इनकी खेती में बीज और खाद का खर्च कम आता है। यदि उन्नत तरीके और वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाए तो बहुत कम जगह से भारी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। करेला, लौकी और कद्दू जैसी सब्जियां लोगों की रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा है, इसलिए इनकी बाज़ार में मांग साल भर बनी रहती है। और आप इन बेलों का मचान या सहारे पर चढ़ाकर खेती की जाती है, इससे ज़मीन की बचत होती है और ज़मीन पर फैलने वाली बीमारियों से भी बचाव होता है। ज़मीन से ऊपर होने के कारण इन पर बारिश के पानी का नमी का सीधा बुरा असर नहीं पड़ता है और फल सड़ने से भी बच जाते हैं।

0: सब्जियां हमारे दैनिक भोजन और आहार का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे प्रतिदिन के भोजन में सब्जियों की विशेष अहमियत इसलिए है कि सब्जियों से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण, विटामिन और खाद्य रेशे प्राप्त होते हैं। सब्जियां हमें स्वस्थ शरीर, मजबूत दांत और लंबी उम्र प्रदान करती है। शाक सब्जियां न केवल हमारे भोजन को पौष्टिक, स्वादिष्ट और रुचिकर बनाती है बल्कि हमें संपूर्ण जीवन शक्ति प्रदान करती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और सुडौल बना रहता है। शाक सब्जियों में अनेक रोगों को जड़ से नष्ट करने की अचूक क्षमता होती है। प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जलवायु और मौसम प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप विश्व में पैदा होने वाली सभी प्रकार की सब्जियाँ यहाँ उपस्थित तो है लेकिन लत्तर वाली सब्जियों का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन में लत्तर वाली सब्जियों का आर्थिक महत्व अधिक है। इन्हें उगाना सरल है, आप जहाँ भी चाहें वहाँ उगा सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन इन सब्जियों की उत्पादकता प्रति इकाई भूमि में बहुत कम है। परंपरागत किस्मों की उन्नत और संकर किस्मों की खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो उत्पादन और उत्पादकता अवश्य बढ़ेगी, लेकिन सब्जी उत्पादन में हम अभी भी विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ईश्वर ने हमें अनुपम उपहार के रूप में विभिन्न प्रकार की भूमि और जलवायु प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप भारत की इस पवित्र धरती पर विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां उपस्थित हैं जिनमें कद्दू लत्तर वाली सब्जियां की विशेष अहमियत है।
1: लत्तर वाली सब्जियों की कृषि प्रणाली बहुत सरल है ग्रामीण भाइयों, इसलिए इसकी खेती बहुत लोकप्रिय है। लत्तर वाली सब्जियों का प्रति हेक्टेयर बीज दर बहुत कम है, उत्पादन में लागत खर्च भी कम है। इन सब्जियों की खेती सालों भर होती है। इनकी बागवानी न केवल समतल ज़मीन पर होती है बल्कि पेड़ों पर, छपरों पर, आंगन में या नदियों किनारे पर कहीं भी की जा सकती है। कद्दू परिवार की लत्तर वाली सब्जियों के बिना प्रत्येक गृह वाटिका अधूरी मानी जाती है। एक वर्ग की सब्जियों का भंडारण आसान है, इस वर्ग की सब्जियों का भंडारण आसान है और इन्हें दूर दराज के बाजारों में आसानी से बेचा भी जा सकता है।
0: तो ग्रामीण भाइयों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।

हमारे श्रोता भी सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम हम कुछ ही पल में प्रस्तुत करेंगे। किसान

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: कृषक भाइयों, सबसे पहले बातें आज के समसामयिक कृषि कार्य की, यानी इस महीने की कृषि कार्य की। तो मौसम और महीने के हिसाब से किए जाने वाले सटीक कृषि कार्यों को हम समसामयिक कृषि कार्य में शामिल करते हैं। वर्तमान जुलाई के महीने में खरीफ फसलों की बुआई, खरपतवार प्रबंधन और उर्वरक डालने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो मेदिनीनगर पलामू क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ समसामयिक कृषि कार्य बता दें इस महीने के लिए। तो खरीफ फसलों की बुआई और प्रबंधन आप जरूर कर लें। यदि आपने नर्सरी यानी बिचड़ा तैयार कर ली है तो जुलाई के पहले पखवाड़े में धान की रोपाई शुरू कर दें। मक्का, अरहर, उड़द, मूंग और तिल की बुआई पूरी करें। फसलों और मेड़ के आसपास उग आए अवांछित घास फूस और खरपतवार को नष्ट करें।
1: और बात करते हैं उर्वरक और जल प्रबंधन की। तो सबसे पहले खाद का प्रयोग करेंगे आप। धान और मक्का की फसल में यूरिया की पहली ड्रॉप ड्रेसिंग करें। खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें ताकि भारी बारिश से फसलें जलमग्न न हो। यदि आपको अदरक, हल्दी या सब्जियों में जैसे भिंडी टमाटर की खेती की है तो पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाएं। और आप नए पौधे भी लगा सकते हैं। इस मौसम में आम, अमरूद, नींबू और पपीता के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे खोदकर तैयार रखें और रोपाई करें। पेड़ों के आसपास पानी न रुकने दें और ज़रूरत के अनुसार जैविक खाद डालें। अब बात करते हैं पशुपालन की। तो इसमें टीकाकरण की बात करें तो बारिश के मौसम में पशुओं को यानी गाय, भैंस, बकरी को गलघोंटू और लंगड़ा बुखार से बचाने के लिए स्थानीय पशु चिकित्सक से संपर्क कर टीकाकरण कराएं और पशुओं के बाड़े को सूखा और साफ रखें।

0: कृषक भाइयों, अभी हम बात कर रहे थे समसामयिक कृषि कार्य की। आइए कार्यक्रम लेते हैं छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।

0: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप तमाम किसान भाई बहनों का आपके कार्यक्रम का किसान वाणी में। और आइए अब भेंटवार्ता की ओर चलते हैं। विषय है खरीफ के उन्नत कृषि यंत्र। भेंटवार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ पलामू के डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी, बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे कृषि यंत्र की, और अभी वर्तमान में खरीफ में हमें किन किन कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है खेतों खलिहानों में, इनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे, और कौन कौन सी नवीन कृषि यंत्र हैं और इस संबंध में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो बताया जाए कि अभी किन किन कृषि यंत्रों की आवश्यकता हमारे ग्रामीण भाइयों को पड़ेगी।
2: खरीफ के मौसम में किसान भाई खरीफ की फसल लगाने में व्यस्त हैं, लेकिन खासकर जो खरीफ मौसम में कृषि यंत्रों का उपयोग है वो अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि कृषि यंत्र का उपयोग करके किसान भाई अपने खेत में फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, और उनकी जो दक्षता है उसमें आप उनका वृद्धि कर सकते हैं। तो कृषि यंत्र का उपयोग करना किसान भाइयों के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जिससे उनका लागत खर्च कम आएगा, और लागत खर्च कम आएगा तो उसमें मुनाफा ज़्यादा होगा। और ख़ासकर खरीफ में जो कृषि यंत्र का उपयोग है, खेत से जुताई से लेकर के फसल के भंडारण तक बहुत सारे कृषि यंत्र हैं। जैसे खेत की जुताई करते हैं अभी, जैसे किसान भाई खेत की जुताई देसी हल से करते हैं, लेकिन देसी हल से करने में न खेत की अच्छी जुताई होती है और समय भी ज़्यादा लगता है, जिससे उनकी लागत खर्च में वृद्धि हो जाती है। उसकी जगह पर अगर कल्टीवेटर का से ही करते हैं निकाई गुड़ाई, या फिर जो है प्लाव जो करते हैं मोल्ड बोल्ड प्लाव का उपयोग करके किसान भाई खेत की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मोल्ड बोल्ड प्लाव से खेती करने से क्या होता है कि वो मिट्टी को पलट देता है। मिट्टी को पलटने से जो घास वगैरह है खेत में, घास मिट्टी से दब जाता है, और दब जाने से उस जो है कुछ दिन में सड़ करके वो खाद कर काम करता है। तो वो अगर मोल्ड बोल्ड हॉल से जुताई करते हैं, उसके बाद जो खेत की तैयारी कल्टीवेटर से करते हैं, तो उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, समय की भी बचत होगी, जिससे कि उनका उत्पादन ज़्यादा आएगा, तो उनका लागत का जो है उनका आमदनी ज़्यादा होगा। दूसरी बात है, खेत की तैयारी के बाद फिर रोपाई की बात आती है, बुआई की बात आती है, तो रोपाई बुआई में भी बहुत सारे कृषि यंत्र हैं। किसान भाई जनरली जो है छींटा विधि से किसी फसल को बो देते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी बीज जो है प्रॉपर जगह पर नहीं पहुंच पाता, कोई बीज ज़्यादा दूरी पर चल जाता है, कोई बीज नज़दीक हो जाता है, कोई बीज जो है ज़मीन के अंदर थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, कोई कम ही रहता है, जिससे न समान रूप से फसल उग पाता है और बीज की भी बर्बादी। अगर उसके जगह पर किसान भाई सीड ड्रिल का उपयोग करें, जिससे कि समान दूरी पर जो है बीज भी गिरेगा, समान गहराई में वो बीज जाएगा, जिससे कि हर बीज का जर्मिनेशन सही होगा।
1: सीड ड्रिल से किन किन फसलों के बीज की बुआई होती
2: है? सीड ड्रिल से हर फसल की बिजाई हो सकती है। उसमें जो है उसका रोटर जो है चेंज करना होता है, और जिस आजकल तो सीड ड्रिल से हम लोग धान की भी सीधी बुआई करवा रहे हैं, तो धान की भी सीधी बुआई उससे कर सकते हैं, और ऐसे भी मक्का का जो है, अरहर का जो अभी चल रहा है उसकी बुआई कर सकते हैं ऐसे। और इसके अलावा भी है बुआई के लिए डिबलर विधि से भी, जैसे मक्का की बुआई करते हैं तो एकक मक्का की बुआई करते हैं, जैसे उसमें टाड़ी लगा करके किसान भाई करते हैं, एक उसमें समय की भी ज़्यादा लगता है कि आदमी उसमें दो आदमी की जरूरत पड़ती है, एक अब हल चलाते रहता है, पीछे से एक जो है टाड़ी में मुट्ठी से डालते रहता है। अच्छा। तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस किसान होगा, ज़्यादा अनुभवी किसान होगा, तो थोड़ा सा मेंटेन होगा डिस्टेंस, लेकिन जब अनुभवी नहीं होंगे तो ज़्यादा मेंटेन नहीं होता है। तो उसके जगह पर अगर डिवलर का उपयोग करते हैं किसान भाई, तो समान डिस्टेंस पर समान गहराई में बीज को उस डिवलर विधि से मक्का के बीज को भी लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे यंत्र हैं, इसका उपयोग किसान भाई खरीफ में कर करके अपनी लागत में खर्च में कमी ला सकते हैं। दूसरी बात आती है, अब जो

0: अब वाई के बाद जो है अब उसकी निकौनी की आती है बात, निकाय गुड़ाई की बात आती है। तो निकाय गुड़ाई में भी काफ़ी अंतर है। निकाय गुड़ाई और रोपाई में जनरली महिलाएं ज़्यादा सक्रिय रहती है, तो महिलाओं को उससे क्या होता है कि अगर मैनुअल करती हैं तो उनको ज़्यादा थकावट भी होती है। रोपाई कर रही हैं, जैसे धान की रोपाई कर रही हैं, तो उसमें ज़्यादा आपका जो है उनमें कमर दर्द और हाथ का दर्द होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसी तरह से अरहर की बुआई कर रहे हैं, मक्का की बुआई कर रहे हैं, तो उसमें श्रम ज़्यादा लगता है और लागत भी ज़्यादा लगता है। तो उसके जगह पर अगर जो है उन्नत कृषि यंत्र का उपयोग किसान करें तो उसमें लागत कम हो। उसमें जैसे आप निकाय गुड़ाई के अभी तो रुपाई की बात की है कि इस मशीन से रुपाई कर सकते हैं, निकाय गुड़ाई में जहाँ तक बात आता है जैसे हैंड हो है, व्हील हो है, ये सारे मशीन से धान की निकौनी के लिए है, पैडी वीडर है, जापानी पैडी वीडर है, ये सारे का अगर उपयोग करते हैं किसान भाई तो निकौनी भी सही होगी और समय की काफी बचत होगी, लागत खर्च कम होगा और श्रम की बचत होगी, काफी कम मेहनत में ज्यादा निकौनी कर सकते हैं। दूसरी तरह से पावर बीडर आता है, पावर बीडर से भी निकौनी कर सकते हैं। जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां मान लिया आप कल्टीवेटर से कर रहे हैं निकौनी, जहां ट्रैक्टर चला करके, और कुछ कुछ जगह है कि बड़े बड़े ट्रैक्टर जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे बगीचा में कर रहे हैं, बाग में कर रहे हैं, जहां बड़ा ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं, तो वहां पर छोटे बीडर पावर बीडर आता है, वो पावर बीडर से भी वैसे जगह पर निकौनी आसानी से किया जा सकता है। तो घास घास वगैरह का निकौनी करके आप उसमें काफी समय की बचत कर सकते हैं और लागत खर्च में कमी। तो इस तरह से किसान को जो है जो कृषि यंत्र का उपयोग करके लागत में और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।
1: महिलाओं की बात जहां तक आ रही थी तो जी अभी जी। तो बहुत सारे हसुआ वगैरह भी बहुत
0: जी जी हाँ तरह तरह वो अब बात आते हैं आगे। जैसे अब निकौनी की बात आई, निकौनी के बाद उसकी कटाई की आती है, कोई सी फसल की कटाई की बात आती है तो कटाई भी महिलाएं ही जनरली महिलाएं ज्यादा करती हैं। इस सरकार में जैसे महिलाओं का भी काफी कृषि में काफी रोल है, क्योंकि
1: उनके बिना तो कृषि
0: अधूरा ही है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं के बिना कृषि कार्य हो ही नहीं सकती है, जैसे रोपाई में, चाहे भंडारण में, जो फसल का भंडारण करते हैं उसमें महिलाओं का अहम रोल है। तो जैसे तो आप जो जैसे धान काटने में, धान काटने में हसिया के उपयोग करते हैं जनरली किसान भाई अपना देसी हसिया का, लेकिन अगर उसी जगह पर तकनीकी रूप से बनाई गई हसिया का उपयोग अगर किसान भाई करें तो उससे श्रम में काफ़ी बचत, कम मेहनत में ज़्यादा खेत को काट सकते हैं। समय श्रम की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और आपका जो लागत खर्चा रहा है उसमें कमी आ जाएगी, तो उससे आपका जो है जो लाभ है वो लाभ ज़्यादा आएगा। तो उसमें अगर नवीन हंसुआ का उपयोग कर सकते हैं, अब तो बहुत सारा ऐसे आ गए हैं जैसे आप रिपर भी है, रिपर से भी कटनी कर सकते हैं। अगर बड़े किसान हैं रिपर से कर सकते हैं, उससे बड़े किसान हैं आप पावर कंबाइन हार्वेस्टर आ गया है, कंबाइन हार्वेस्टर में से आप फसल को एक बार में ही काट करके उसका थ्रेसिंग भी कर सकते हैं और बैगिंग भी कर सकते हैं, भंडारण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े भाई यंत्र आ गए हैं, लेकिन जो किसान जिसमें सक्षम है छोटे यंत्र से ही नवीन हसिया से उपयोग करें, नवीन हसिया से जो आप देसी हसुआ का उपयोग करते हैं उसके जगह पर नवीन हसुआ से काटें, जो ज्यादा महंगी भी नहीं है, जो आप इधर देसी हसुआ 30 रुपया में लेते हैं वो भी 50 रुपया में मिल जाएगी।
1: अच्छा, तो ये कीटनाशक छिड़काव की बात,
0: हाँ जी हाँ, एक बीच में ये बात आ गई कि छिड़काव के लिए यंत्र, क्योंकि देखिए छिड़काव में किसान भाई कुछ कुछ जो रोग फसल में लग जाते हैं उसके लिए कुछ रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि किसान भाई अगर मशीन का उपयोग नहीं करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है
1: जी।
0: क्योंकि वो या तो हाथ से छींटते हैं या झाड़ू से छींटते हैं, किस तरह से छींटते हैं तो वो या तो फसल पर भी प्रॉपर नहीं पड़ पाता है और उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके जगह पर अगर जो किसान भाई है स्प्रेयर का उपयोग करें, पावर स्प्रेयर आ गया, बैटरी चालित स्प्रेयर है, नैपकिन स्प्रेयर है जो पीठ पर लगाकर हाथ से भी करते हैं, उस स्प्रेयर का भी उपयोग कर सकते हैं करें, तो आपको आसानी से छिड़काव भी सही सामान्य रूप से फसल पर होगा और आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि कुछ किसान भाई जो है आप उपयोग करते हैं पाउडर का, पाउडर का भी छिड़काव के लिए अगर डस्टर का उपयोग, उसमें डस्टर मशीन है छोटे छोटे, उस डस्टर मशीन से अगर छिड़काव करते हैं पाउडर का, पाउडर रूपी जो कीटनाशक है, तो उससे भी समान रूप से जो है फसल पर मिलेगा और इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा,
1: उड़ करके बदन पर
0: नहीं आएगा। दूसरी बात, सीड ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ केमिकल का उपयोग किसान भाई करते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो केमिकल को जो है बीज को उपचारित

0: करते हैं उससे, तो बीज पर लगाते हैं, वो जनरली हाथ से ही लगाते हैं, जिससे है कि हर बीज पर वो प्रॉपर जो है केमिकल्स लग भी नहीं पाता है, कीटनाशक जो लगा रहे हैं वो लग भी नहीं पाता है, और उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए जो है अगर उपयोग करते हैं सीड ट्रीटमेंट ड्रम का, तो सीड ट्रीटमेंट ड्रम से सब अच्छी तरह से सभी बीज पर उस केमिकल का लेप भी पड़ जाता है और आपका स्वास्थ्य पर भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे यंत्र हैं, इसका उपयोग किसान भाई करके अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं, अपनी लागत खर्च को भी बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, श्रम में भी कमी होगी और आप उससे उत्पादन भी अच्छा आएगा, क्योंकि सभी फसल पर समान रूप से सारी चीज़ पड़ रहे हैं।
1: आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी। आप कृषि यंत्रों से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे खरीफ के उन्नत कृषि यंत्र। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जो कृषि विशेषज्ञ पलामू के हैं, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब बात करते हैं बकरी पालन के अनेकों लाभ की। किसान भाइयों, कृषि के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, मत्स्य, मुर्गी, मधुमक्खी आदि पाले जा सकते हैं। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत कम पूंजी और छोटी जगह में भी सरलता से किया जा सकता है। बकरी लघु आकार की पशु है जिसे बहुत आसानी से पाला जा सकता है। इसका सीमांत और भूमिहीन किसानों द्वारा दूध और मांस के लिए पालन करते हैं। तो वर्तमान में बकरी पालन केंद्र करने में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 25 से 33.3% तक अनुदान भी देने का प्रावधान है। बकरियों की सबसे बड़ी विशेषता

बकरियों में तरह तरह के जलवायु में सामंजस्य बैठाने की विशेष क्षमता है किसान भाइयों। इस सब कारण बकरियां अपने देश के अलग अलग तरह के भौगोलिक क्षेत्रों में आसानी से पाली जा रही हैं। कई नस्लों में एक से ज़्यादा मेमने पैदा करने की क्षमता होती है। ये ब्याने के पश्चात अन्य प्रजातियों की अपेक्षा पुनः प्रजनन के लिए शीघ्र तैयार हो जाती है। गाय या सुअर के मांस के विपरीत बकरी का मांस सर्वग्राही है, यानी इसे सभी धर्मों के अनुयायी खाते हैं। इसका प्रमाण बकरी के दूध और मांस से बने उत्पादों की बढ़ती मांग और शीघ्र विपणन भी है।

0: बकरियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि मनुष्य और पशुओं के लिए गैर उपयोगी कम पदार्थों को बहुत उपयोगी उत्पादों जैसे दूध और मांस, दूसरे उत्पाद उप उत्पाद रेशा, बाल, खाल आदि में बदलने की सामर्थ्य और क्षमता है। इसके दूध में औषधीय गुण होते हैं क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ, बेरी, जरबेरी, छोकड़ा, करील, बबूल, हींग, वृक्षों की पत्तियां यानी बरगद, पीपल, पाकर, गुलर, सहतूत, कटहल, जामुन, नीम, कचनार, अरूषा, महुआ आदि और वृक्षों की पकी सूखी फलियां जिसमें देशी बबूल, सुबबूल, सीरस आदि खाती है। इनमें से कुछ झाड़ियां और वृक्ष औषधीय भी होते हैं। बकरी पालने का आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद बनाने के लिए 95 बकरी पर 5 बकरे पालने आवश्यक होते हैं। औसत रूप से एक बकरी के लिए 1 वर्ग मीटर का क्षेत्र चाहिए। किसी भी प्रकार के पशुपालन व्यवसाय की सफलता में उसके प्रजनन का विशेष महत्व होता है जो जनन चक्र की नियमितता और निरंतरता पर निर्भर करती है। जनन चक्र को अपनाकर पशु की जनन क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी की जा सकती है। सही जनन चक्र के माध्यम से उस पशु के बच्चों की संख्या और दूध प्राप्ति की मात्रा निर्धारित होती है।
1: बकरी लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में मेमने देने योग्य आती है और 5 से 6 महीने में मेमने पैदा करती है। सामान्यतः एक बकरी 2 से 3 मेमनों को जन्म देती है। वैसे जहाँ तक बकरियों के प्रजनन का संबंध है तो इनके प्रजनन का सर्वाधिक उपयुक्त काल मई के 2 सप्ताह से लेकर जुलाई तक होता है। इसी प्रकार इस मौसम में गर्भधारण करने वाली बकरियाँ मेमनों को जन्म देती हैं। भारतीय नस्ल की बकरियों के जनन अभिलक्षणों में विविध होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता भी एक समान नहीं होती। यदि पूरे जनन को एक चक्र के रूप में मान ले तो इससे संबंधित प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम

0: कुछ खास लाभ हम आपको बता दें, ये बकरी पालन कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। बकरियों की देखभाल अपेक्षाकृत आसान होती है। बकरी का दूध पौष्टिक और आसानी से पचने वाला होता है। मांस की बाजार में अच्छी मांग रहती है। बकरी का गोबर उत्तम जैविक खाद के रूप में उपयोगी है।
1: और बकरियाँ जल्दी प्रजनन करती है, जिससे पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ती है। छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का अच्छा स्रोत है। प्राकृतिक घास और झाड़ियों पर भी आसानी से पालन किया जा सकता है। महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार का अच्छा अवसर प्रदान करता है। आपातकाल में बकरियों को बेचकर तुरंत आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। बकरी पालन कम लागत, अधिक लाभ और अस्थायी आय का एक प्रभावी साधन है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

किसान भाइयों, अंतर्वर्ती खेती से लाभ की बात करते हैं तो भूमि का बेहतर और अधिकतम उपयोग होता है। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें प्राप्त होती है, किसानों की आय बढ़ती है, फसल खराब होने का जोखिम कम हो जाता है, खरपतवार की वृद्धि कम होती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, विशेषकर दलहनी फसलों के साथ कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है, जल और उर्वरकों का बेहतर उपयोग होता है, उत्पादन और लाभ दोनों में वृद्धि होती है। खेती अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल भी बनती है। अंतर्वर्ती खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इससे भूमि का समुचित उपयोग, उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।

0: कुछ और अतिरिक्त लाभ हम आपको बता दें। अंतर्वर्ती खेती से फसलों की विविधता बढ़ती है, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव कम पड़ता है, कम होता है, मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन कम होता है, खेत में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, मजदूरों को पूरे मौसम में नियमित रोजगार मिलता है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ जाती है, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और कुशल उपयोग होता है, किसानों को पूरे वर्ष अलग अलग समय पर उपज मिलती रहती है जिससे नियमित आय बनी रहती है, कीटों का एक फसल से दूसरी फसल में तेजी से फैलाव कम होता है, खेत की उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि होती है, जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों से फसल को कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है, किसान भाइयों इकोसिस्टम यानी खेत की पारिस्थितिकी अधिक संतुलित रहती है, खेत अधिक टिकाऊ यानी सस्टेनेबल और लाभकारी बनती है।
1: तो किसान भाइयों इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति। नमस्कार।
0: प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनिषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूमरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत ANM कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनिमोन मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सांडदा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ रहा है।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर की बेटी तनिषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर इस संवाद का आयोजन किया गया। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा ने ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों से भी अपने तथा परिवार के सदस्यों का इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरवाने का आग्रह किया। रांची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा किया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज जमशेदपुर के आदित्यपुर में दिवंगत हिमांशु सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान श्री साहू ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है।
4: जिस प्रकार से जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमने दो दो जुआ नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। एक जुआ की मौत हो गई, एक जुआ जीवन और मौत से जूझ रहा है और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है, इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है।
2: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन करते हुए इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का

0: पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 17-18 वर्षों से संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों को अंतरिम राहत देते हुए अंतिम निर्णय तक उन्हें सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सेवा नियमितीकरण से जुड़ी याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि अर्जीमोन मिले सरसों तेल के सेवन से परिवार के सदस्यों को ड्रॉपसी रोग हो गया था, जिससे शरीर में सूजन फैलने के बाद उनकी मौत हो गई। धनबाद के निरसा से विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वसेपुर क्षेत्र में प्रिंस खान से जुड़े एक ठिकाने पर आज बुलडोजर चलाया गया। धनबाद के सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि कुड़की जब्ती के आदेश को लेकर कार्रवाई की गई है।
1: पूरी तरह से लगभग खंडर हो चुका था, इसका पार्ट पूजा सब गिर रहा था। यहाँ पे बच्चे खेलते थे, एक दो बच्चों को यहाँ पे चोटें भी आई और संभवतः इसका नक्शा वगैरह भी पास नहीं था, तो इन सभी के मद्देनजर कुर्की भी की गई। जो पार्ट्स गिर रहे थे, जो खंडर हो चुका था, जिसके कारण जनमानस को दिक्कत हो रही थी, उसे अभी तोड़ा जा रहा है और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा उसमें।
0: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी।
2: कस्टोडियन के कैपेसिटी में हमको देखना है किस तरह से हम हेड वाइज इसको खर्च करें, जिसे इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ और पब्लिक ट्रस्ट बना रहे पर्पस है। अगर फाइनेंशियल में मिसमैनेजमेंट हो गया तो ट्रस्ट एलिमेंट है जो इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ डेवलप नहीं करेगा। उसी के लिए जितना भी रिपोर्ट होता है PAC में जाता है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं डिस्कशन करते हैं, यही फोकस है कि हम लोग उसी ट्रस्ट को बनाने के लिए गैदरिंग है उसको।
0: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल आयोजन को लेकर आज देवघर में झारखंड और बिहार के अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। संथाल परगना आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ पर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की समीक्षा की गई। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने बताया कि मेले के दौरान VIP दर्शन पर रोक रहेगी।
3: सभी बिंदुओं पे आज बहुत ही दृढ़ तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग एस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं ये कितने हैं, कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल से आपस में शेयर करें ताकि हम लोग आगामी श्रावणी मेला का संपादन में बहुत बढ़िया जाए।
0: रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कल मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के वुशु हॉल में होगा, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और प्रशिक्षण केंद्रों के जूनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के चयन का अवसर मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन, कहा डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनीषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत ANM कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनमोड मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा।

0: और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा में SIR यानी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान मतदाता सूची को दुरुस्त करने और उसके शत प्रतिशत सत्यापन के लिए चलाया जा रहा है। BLO और BLO पर्यवेक्षक घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची से जोड़ना और अयोग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाना है। BLO चांदनी बीबी कहती हैं कि
2: मैं घर घर जाके नाम पत्र बांट रहा हूँ और जो सही पाया जा रहा है उनका मोबाइल में नाम कर रहा हूँ।
1: सरकारी शिक्षिका गायत्री रॉय वॉलंटियर के रूप में SIR अभियान को पूरा करने में जुटी हुई हैं। वह बताती हैं कि
3: मेरा प्रमुख काम है BLO और मतदाता को SIR से संबंधित सभी तरह का सहयोग प्रदान करना। ये सरकार की तरफ से एक पहल है जिसमें कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी फर्जी मतदाता मतदाता सूची में नहीं है।
1: मतदाता टीम के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गणना प्रपत्र में जरूरी जानकारी भरकर हस्ताक्षर कर BLO को लौटा रहे हैं। दुमका में संताल हूल दिवस शौर्य और गौरव भाव के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। दुमका की पोखरा चौक स्थित अमर शहीद सीधो कानू एवं वीरांगना फूलो झानू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुमका के विधायक और झामुमो नेता बसंत सोरेन, पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन, उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण पढ़कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि
4: दिन को लोग जरूर मनाएं और उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उन चीजों को याद करते हुए, उन्हें अनुसरण करते हुए अपने जीवन को एक प्रेरणा के तौर पर जीवन मिलाने का प्रयास करें।
1: भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इस अवसर पर कहा कि
5: हम लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आज की सरकार कि जो गलत नीतियों का जो परचम लहरा रही है और अवैध खनन पूरे जोर शोर से चल रही है और यहाँ के जनता भूखे मर रहे हैं वो हम लोग देखने पा रहे हैं।
1: दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट से एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी जिसमें दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि
6: डिस्ट्रिक्ट जज साहब को बाय पोस्ट लेटर दिया गया जिसमें कि बोला गया कि हम लोग कोर्ट में हमला करेंगे। इसमें मुख्य बात है स्पीड पोस्ट में चिट्ठी लिखे थे वो अपने आधार कार्ड भी मेंशन किया, अपना डिटेल एड्रेस भी दिए थे तो उसका छानबीन किया गया। पूर्वी वर्धमान का वो निवासी है जो आधार कार्ड है उन लोगों ने बताया कि हम लोग कभी ऐसा चिट्ठी नहीं लिखे, लगता है कोई दुर्भावना से हम लोग से किसी का विवाद होगा इसलिए हम लोग का नाम दे दिया और आधार कार्ड मेरा डाल के जज साहब के यहाँ स्पीड पोस्ट कर दिया।
1: बासुकीनाथ श्रावणी मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। इस माह के अंत में मेले की शुरुआत होनी है। RK नीरद आकाशवाणी समाचार दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत, क्षमा करेंगे, पेश खिदमत है गीत गज़लों का कार्यक्रम स्वरांजलि। आज के हमारे फ़नकार हैं ग़ुलाम अली।

अभी आपने मोहसिन नकवी का कलाम सुना। आप सुन रहे हैं स्वरांजलि कार्यक्रम के तहत गुलाम अली की गाई गज़लें। अगली गज़ल मौलाना हसरत मोहानी की है।

श्रोताओं, हमें खेद है कि इसी कारणवश ये गजल हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। अब आइए सुनते हैं सागर सिद्दीकी की लिखी अगली।

ابھی آپ نے نذیر قیصر کی لکھی غزل سنی۔ آواز دے رہے تھے غلام علی۔

0: ग़ुलाम अली की आवाज़ में अभी आपने नज़ीर क़ैसर का कलाम सुना। ग़ुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ ही स्वरांजलि कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। शीर्षक है ई कचरा का सदुपयोग। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम विज्ञान जगत में। और इस कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी ई कचरा। श्रोताओं, विज्ञान के अनेकों देन हैं और इसके इतने चमत्कार हैं जिनका उपयोग करके मानव जीवन बड़ा ही सरल और सुगम हो गया है। हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान के कई उपकरणों जो विज्ञान की देन हैं उनका उपयोग करते हैं और अपने जीवन को सरल बनाते हैं। कितने ही तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन श्रोताओं, विज्ञान के ये देन खतरा बनकर आज मंडरा रहे हैं जीव जगत पर, पर्यावरण पर। श्रोताओं, जब ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं या किसी काम में आने लायक नहीं रहते हैं तो वे कूड़े का ढेर बन जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है, जब वो जमा हो जाता है तो पूरे पर्यावरण के लिए एक विषाक्त माहौल पैदा कर देता है। और आज के समय में, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसे हम ई कचरा कहते हैं, दुनिया भर के विकसित और विकासशील देशों में उभरती समस्याओं में से एक है। श्रोताओं, इसके कई तरह के घटक होते हैं जिनमें मूल्यवान सामग्री होती है, तो कुछ में जहरीले पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। श्रोताओं, अध्ययनों से पता चला है कि भारत में 2010 में 0.4 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ था, जो कि 2021 में 5 मिलियन टन ई कचरा बढ़कर हो गया है, और जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चीन से कम है। तो श्रोताओं, ई कचरा के निपटान और पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, नहीं तो इनके खतरों से भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इनके निपटान और पुनर्चक्रण यानी कि मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के लिए उचित बुनियादी सुविधाओं और प्रक्रियाओं की कमी के साथ साथ भारत में ई कचरा प्रबंधन महत्वपूर्ण विषय हो गया है। सामान्यतः ई कचरे के पुनर्चक्र और दूसरे देशों से ई कचरे के पुनर्चक्रण, साथ ही कचरे को डंप करने से उत्पन्न होता है। इनमें से ज़्यादा कचरा डंपिंग यार्ड या पुनर्चक्रण केंद्रों में जा रहा है, जो पर्यावरण और नीति निर्माताओं के लिए चुनौती पेश कर रहा है। सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे जीवन को खुशहाल और सरल बनाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मौजूद विषाक्तता है उसके कारण इनका निपटान और पुनर्चक्रण अगर सही तरीके से ना हुआ तो ये स्वास्थ्य के लिए एक बुरा स्वप्न बनकर रह जाएगा, और इसका खामियाजा हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। अधिकांश उपयोगकर्ता, हम जैसे उपयोगकर्ता हैं, वो कंप्यूटर, मॉनिटर या टीवी के तेजी से बढ़ते उपयोग के प्रभावित नकारात्मक प्रभाव से अनजान हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और अगर वो खराब हो जाता है उसे कूड़े के ढेर में तब्दील कर देते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न जो खतरा है उससे हम अनजान होते हैं। अगर इनका ठीक से प्रबंधन न किया जाए तो ये बहुत बड़ी कठिनाई साबित होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स संचार का भविष्य हैं। ये जितने उपकरण हैं, ये और आने वाले समय में भी कई अन्य गैजेट्स का उत्पादन या निर्माण किया जाएगा, लेकिन विभिन्न उपकरणों के कम जीवन काल के कारण उन्हें कचरा बनते देर नहीं लगती और तब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है जब इनका निपटान सही तरीके से नहीं होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लाखों बच्चे, किशोरों, गर्भवती माताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी और तत्काल समुचित कार्रवाई की आवश्यकता है जिनका स्वास्थ्य बेकार पड़े विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनौपचारिक प्रसंस्करण के कारण खतरे में पड़ गया है। ई कचरे की मात्रा वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। हर देश, हर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आज कर रहे हैं। ई कचरे के प्रबंधन के लिए भारत में 2011 से कानून लागू है, लेकिन जब तक ई कचरे के प्रबंधन से संबंधित जागरूकता की कमी रहेगी तो समस्या बरकरार रहेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ई कचरे से उत्पन्न हानियों के बारे में उन्हें समझाया जाए। श्रोताओं, जैसे जैसे हमारी दुनिया अधिक से अधिक डिजिटल होती जा रही है, ये समस्या जो है वो बड़ी बनती जा रही है। ये सिर्फ पर्यावरणीय चिंता का मामला नहीं है, बल्कि इसका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, तंत्रिका संबंधी विकार शामिल हैं और इसके साथ साथ ये कैंसर को भी जन्म देता है। ये संपूर्ण जीव जगत को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है और जब इसका उचित तरीके से निपटान नहीं होता है तो ये लैंडफिल में समा सकता है, जहां इसे नष्ट होने में सालों लग सकते हैं। और इस दौरान ई कचरे में मौजूद जहरीले पदार्थ आसपास के वातावरण में पहुंच सकते हैं, मिट्टी, हवा, पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। इसलिए इन उपकरणों का निपटान बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक करना महत्वपूर्ण है। और अगर किसी उपभोक्ता को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वह उसे दान कर सकता है ताकि किसी और के द्वारा उसका उपयोग किया जा सके। जिस इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखने की ज़रूरत नहीं है उसे वापस कंपनियों को दिया जा सकता है और वे उस उत्पाद के बदले में विनिमय सेवा प्रदान करने की पेशकश करती हैं। श्रोताओं, हर देश की सरकार ई कचरा प्रबंधन पर अब जागरूक होती है, काम कर रही है और वैज्ञानिक तरीकों से इसका पुनर्नवीनीकरण किया जाने लगा है, या फिर औपचारिक क्षेत्र में छोटे छोटे भागों में या समग्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने लगा है। अगर इसे सही तरीके से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है तो खतरे की संभावना कुछ कम हो जाती है। भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करना और रिसाइकल करना शुरू कर दिया है और अपनी जो समावेशन नीतियां हैं, उनकी कार्य करने की जो शैली है, पद्धतियां हैं, उसकी सहायता से जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं उनका रिसाइकलिंग कर जो हमारे लक्ष्य हैं विकास के, उन्हें पूरा करने में सहायता कर रही हैं और इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बना रही हैं। और इसके साथ साथ ज़रूरत है, जैसा हमने कहा, कि लोग बाग जागरूक हों, लोग समझें कि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का क्या हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होगा जब ये वेस्ट के रूप में मौजूद होगा हमारे आसपास। तो श्रोताओं, जागरूकता से हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग भी बखूबी कर सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी ई कचरा कार्यक्रम विज्ञान जगत के तहत, और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम विज्ञान जगत से इजाज़त अगले अंक तक के लिए। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, शीर्षक था ई कचरा का सदुपयोग। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का था।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

खिलाड़ी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी अभिजीत और अलका याग्निक की, अनवर सागर के बोल थे और जतिन ललित का संगीत था। कार्यक्रम की अगली पेशकश है बाजीगर फिल्म से, आवाज़ें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की। शब्द रचना देव कोहली की है और इसकी धुन बनाई है अनु मलिक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चित्रपट से कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, बादल फिल्म से। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

बिच्छू फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी विनोद राठौर और अलका याग्निक और साथियों की। शब्द रचना समीर की थी और इसकी तर्ज बनाई थी आनंद राज आनंद ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल, सुखदीप गिरवाल और साथियों की। इसी के साथ इंद्रधनुष कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया आप बने रहें हमारे साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांड में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांड संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांड संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ

0: हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी लोकतंत्र सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
0: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है
3: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
3: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets including the United States, Japan and Europe.
4: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
5: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
4: आज दुनिया भर में भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
3: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और

0: भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बुहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों की बरामदात में इजाफे, अंदरून मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुज़श्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने किल्लत का इजाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदामात किए जाएं। ज़राए ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म का वहां आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिम से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही रबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़िरात, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वीं यौमे आज़ादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरक एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातों रात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा, मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासर है। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे T20 बैन अलावामी क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अलावामी मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में CGSEMI के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: भरत व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए, संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया, छिप छिप कर मत देखो।

0: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो हमरी नजर भर जाएगी हमरी नजर भर जाएगी नजर भर जाएगी नजर।
1: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू, अंगुली।

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा, द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री, दाल में काला, कारीगर नवरंग।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीरजी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई,

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई

गीतकार भरतव्याज पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

सच्चे का बोलबाला फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, गीत लिखा था अमित खन्ना ने और इसकी तर्ज बनाई थी बप्पी लहरी ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश है अनपढ़ फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की है, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां और मौसीकार मदन मोहन।

वो कौन थी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की थी। गीत लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और इसकी तर्ज बनाई थी मदन मोहन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, जेलर फिल्म से। आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की है। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन।

आपकी परछाइयाँ। अभी आपने इस फिल्म का नगमा सुना, गाया था लता मंगेशकर ने, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। कार्यक्रम की अगली पेशकश है अदालत फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत

अदालत फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन। अगला गीत आइए सुनते हैं मेरा साया फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां और मौसीकार मदन मोहन।

0: मेरा साया फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की थी। राजा मेहदी अली खां साहब ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश है पूजा के फूल फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत है।
1: मेरी

जीने की राह फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। झुक गया आसमान, लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

झुक गया आसमान फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जय किशन का संगीत था। अगली पेशकश है शान फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और मौसीकार आर डी वर्मन।

और यह है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म ताकत से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, अनुराधा पौडवाल और साथियों की। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: مشار معه. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र

0: चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a six

हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में।